FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई 2026। इस समय सुबह के 5:58 व 30 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। कृपया रेली की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी दिल्ली का

0: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी के को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एच FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हमारे सिर पर ईश्वर का हाथ सदैव होता है, तो हमें चिंता छोड़कर चिंतन करना चाहिए। बाकी शेष तो स्वयं ईश्वर संभाल लेते हैं।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस गान। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है, प्रस्तुति राजेंद्र कचरू और चतुर सेन की है।

चित्रकूट की सभा में भरत की अनुनय विनय सुनकर श्री राम के मन में असमंजस उत्पन्न हुआ और उन्होंने विह्वल हो भरत जो और जैसा चाहे वैसा ही करने का वचन दे डाला। ये सुनकर जहां एक ओर उपस्थित जनसमुदाय हर्षित हुआ, वहां दूसरी ओर देवताओं के मन में नैराश्य उत्पन्न हो गया। देवगण सहित इंद्र आशंकित हो गए, यदि भरत के आग्रह पर श्रीराम अयोध्या लौट गए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। उन्हें मालूम है कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के वश में हैं। भक्त प्रहलाद ने नृसिंह के रूप में भगवान को प्रकट किया था। अतः देवताओं ने भरत के हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी योजना को फलवती बनाने का निश्चय किया। देवगुरु बृहस्पति ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी। फलस्वरूप भरत के मन में अपना आग्रह त्याग कर ये विचार आया कि श्री राम की आज्ञा पालन करने में ही कल्याण है। उन्होंने स्वामी की प्रशस्ति करते हुए निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था, स्वर राजेंद्र कचरू और चतुर सेन का था। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आज के दिन की बात करें तो आज शनिवार है, विक्रम संवत 2083 के ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, तदनुसार 9 मई 2026। श्रोताओं, ये थी आज के दिवस के बारे में जानकारी। आइए अब सुनते हैं ये देशगान।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से

0: शनिवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।

शाम 6:20 पर समय रहेगा गीता संदेश का, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे अध्याय 2 के श्लोक 58 से 63 की व्याख्या। व्याख्याकार होंगे डॉक्टर सुरेश कुमार।

शाम 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम किसानवाणी। कार्यक्रम ग्राम संसार का समय रहेगा शाम 7:00। सुबह 7:40 पर आप सुनेंगे हरियाणवी लोकगीत का कार्यक्रम बाजय नगाड़ा।

शाम 5:30 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम युववाणी का। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा गर्मियों में रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। रात्रि 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा।

सुबह 7:10 पर हम लाएंगे कार्यक्रम दिल पुकारे। कार्यक्रम सुबह सवेरे का समय रहेगा, सुबह 8:30।

सुबह 9:30 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वरांजलि का। कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र का समय रहेगा सुबह 10:00।

शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने नए पुराने। शाम 7:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम जय जवान का। कार्यक्रम गुलदस्ता सुनिएगा रात 7:45। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत हम लाएंगे रात्रि 8:00। रात 10:00 समय रहेगा व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें का।

0: संस्कृतजगतासम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफ़एम् गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Suvendu Adhikari will take oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen, Union Ministers and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Earlier, Mr. Adhikari was elected the leader of the state BJP Legislature Party. The Legislature Party meeting was held in Kolkata in the presence of the Home Minister yesterday. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. Reports are also coming that the swearing-in ceremony, which was to take place today, will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician once again met the governor yesterday and staked claim to form the government, saying that he has majority. Meanwhile, the IUML, headed by Professor Kadir Muhyiddin, has said that his party has not given a letter of support to TVK. In another surprising move, the meanwhile AMMK party leader TTV Dinakaran approached the governor and submitted a letter of support from S. Kamaraj, the lone MLA elected from Mannarkudi, to make AIADMK General Secretary E. Palanisamy as the new Chief Minister. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Guyanese Health Minister and discussed the progress of India-Guyana health ties. Dr. Jaishankar, who is on a three-nation visit to the Caribbean, met Health Minister Dr. Frank Anthony on a stopover at Georgetown in Guyana. Dr. Jaishankar was in Jamaica on the first leg of his tour, then went to Suriname and will be in Trinidad and Tobago for the final leg of his visit. US President Donald Trump has announced a three-day ceasefire between Russia and Ukraine, noting that the temporary truce coincides with Russia's Victory Day celebrations commemorating the then Soviet Union's role in World War II. In a post on Truth Social, Mr. Trump said the ceasefire would take place from 9th to 11th of May and would include a suspension of all kinetic activity between the two countries. Mr. Trump stated that the request for the temporary truce was made directly by him and noted that the agreement will also include a prisoner exchange involving 1,000 prisoners from each side. The US has announced sanctions against 10 individuals and companies, including several in China and Hong Kong, over accusations they aided Iran's efforts to secure weapons and the raw materials needed to build its Shahed drones and ballistic missiles. A report.
3: The US Treasury's last night move comes days before US President Donald Trump plans to travel to China for a meeting with President Xi Jinping and as efforts to end the war with Iran have stalled. In a statement, US Treasury said it remains ready to take economic action against Iran's military industrial base to prevent Tehran from reconstituting its production capacity. Treasury said it is also prepared to act against any foreign company supporting illicit Iranian commerce, including airlines, and could impose secondary sanctions on foreign financial institutions that aid Iran's efforts, including those connected to China's independent teapot oil refineries. Experts say Treasury's actions were aimed at cracking down on Iran's ability to threaten ships operating in the Strait of Hormuz and regional allies. Ashish Abraham for Akashwani News, Delhi.
2: The standoff over the Strait of Hormuz has intensified after Iran rejected a US-backed draft resolution at the United Nations Security Council, calling it flawed and politically motivated. Tehran argued that the proposal will legitimize unlawful actions rather than help resolve the conflict. Iran said the only path towards stability is ending the war, lifting the US maritime blockade on Iranian ports and restoring normal shipping through the Strait of Hormuz. Israel and Lebanon will resume negotiations with 2 days of intensive talks facilitated by the U.S. on May 14th and May 15th. U.S. State Department said delegations from both countries will meet in order to form a comprehensive peace and security agreement that substantively addresses the core concerns of both the countries. And that is the end of this news bulletin.
4: FM पैंडिक 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम दिल पुकारे। कार्यक्रम दिल पुकारे में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। और दोस्तों, आइए कार्यक्रम दिल पुकारे की शुरुआत करते हैं छाया फिल्म के इस गीत के साथ। और इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत से सजाया है सलील चौधरी ने, और स्वर है लता मंगेशकर और मुकेश का।

दोस्तों अभी आपने सुना गीत फिल्म छाया से। इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को आवाज़ दी थी लता मंगेशकर और मुकेश ने और संगीत था सलील चौधरी का। और आइए कार्यक्रम दिल पुकारे में हम आपको अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म इंतकाम से। और इंतकाम से जो हमने ये गीत लिया है ये है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दोस्तों अभी आपने सुना गीत फिल्म इंतकाम से, और राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत था, और गायक कलाकार थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल पुकारे आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से FM बैंड 101.4 MHz पर। और आइए हम कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म वक्त से। ये गीत है आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में। इस गीत को लिखा है साहिर ने और संगीत से सजाया है रवि ने।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल पुकारे, और आइए कार्यक्रम दिल पुकारे में हम अगला गीत अब आपको सुनवाते हैं फिल्म नीला आकाश से। इस गीत को लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, और गायक कलाकार हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

दोस्तों अभी आपने सुना गीत फिल्म नीला आकाश से। इस गीत के गायक कलाकार थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी और गीतकार थे राजा मेहदी अली खां। आइए कार्यक्रम दिल पुकारे में अगला गीत सुनते हैं फिल्म गुमराह से।

दोस्तों ये गीत आपने सुना फिल्म गुमराह से। इस गीत के गीतकार थे साहिर, गायक कलाकार महेंद्र कपूर और संगीत था रवि का। और कार्यक्रम में चलते चलते आपको ये अंतिम गीत सुनवाते हैं फिल्म ज्वेल थीफ से, और इस गीत के गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी।

जी दोस्तों, जाने का मन तो हमारा भी नहीं कर रहा, लेकिन जो समय है वो इससे ज्यादा की इजाजत जो है वो हमें नहीं दे रहा। तो इसी के साथ कार्यक्रम दिल पुकारे अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल पुकारे FM बैंड 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम बाज्य नगाड़ा। कार्यक्रम बाज्य नगाड़ा में हमारे आज के कलाकार हैं नन्हा राम गिल। और आइए उससे पहले कार्यक्रम बाज्य नगाड़ा में सुनते हैं ये संदेश।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
4: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: वो जाग मुसाफिर तू किस

चुग जाए खेत बैठी, भाई चिड़िया चुग जाए खेत बैठ मेरे पछताए के। वो सर जीरा जन्मी अनमोल तेरा क्यों कोटी बदले, वो जाग मुसाफिर।

पिछला रास्ता तने साफ किया ने, पिछला रास्ता तने साफ किया ने, क्यों सूलिया गम में ओ वस हीरा जन्म अनमोल तेरा ऊ कोटी बदले खोवे जाग।

बेडाई वो दिन की इस दुनिया में खेल तमाशा यार देश गवाई दो दिन की गल काटे फिर भरे पेट में पाप

आज हो कह देख पता लग जाए। कदम सिंह के सुमरण कर दे, कदम सिंह के सुमरण कर ले, क्यों जंग दुनिया से जो वस हीरा जन्म अनमोल तेरा की छोटी बदले खो वैसे दाग मुसाफिर बोरब

ओ सतगुण विष्णु पद्मा मिल जाए तामस शंकर में, सतगुण विष्णु पद्मा मिल जाए तामस शंकर मैं, रजोगुण बरत लोक से मिल जाए तीनों अपने अपने धर्म रे, रजोगुण बरम लोक में मिल जाए तीनों अपने अपने धर्म रे, नुबुजू क्यों मरी रे फिक्र में, नुबुजू क्यों मरी फिक्र में, या कौन सी चीज मरी किसना का बेटा बेटा, जब तो खा लिए ला।

आकाश वायु जल सूर्य स्वरूप खिल जाने पृथ्वी अग्नि आकाश वायु।

शर्म मिल गया आवागमन फिरी किसना के बिट्टा बिट्टा या खलिए ला।

सिकायु मिला था रय खोए ते खोवा खस्ता रे जब यू मिला चला बिछड़का होया दोष सत्य ते दिला रे जब यू मिला चला बिछड़का होया दो दिले ते सस्ता रे लक्ष्मी चंद की सबू लमा बस्ता लक्ष्मी चंद की सबू लमा बस्ता होने झगड़े ते बजी किसना के बिटा बिटा यते खालिए लाश।

दूर कर संख्या सारी। ओ गुरु कुमार कुमसी सब मिट

ज्योति का दिया ज्ञान मेरी बात समझ में आई, मेरे रूम रूम में हुई खुशी मन चीज अनमोल पाई। दिव्या ज्योति का दिया ज्ञान मेरी बात समझ में आई, मेरे रूम रूम में हुई खुशी मन चीज अनमोल पाई। दूर करा अंधेरा दिल का, दूर करा अंधेरा दिल।

बिना यू ज्ञान न होवर सुन मानव न दान तू अनहद की जनकार सुना सुन ले लाक ध्यान तू गुरु बिना यू ज्ञान न होवर सुन मानव न दान तू अनहद की जनकार सुनावे सुन ले लाक ध्यान ओ गवरा ग्रस लावा पे गावरा ग्रस लावा पे मुर्दी की ये दुन प्यारी अगम निगम से पार करायो मिटता है संकट भारी दूर करायंदे राजल का दूर करायंदे राजल का ये सतगुर तेरी दीना नारी अगम निगम से पार करे मिटता है ये संकट भारी दूर करायंदे राजल का दूर करायंदे राजल का ये सतगुर तेरी दीना नारी अगम निगम से पार करे मिटता है ये

0: बिना युगान न होवर सुन मानव न दान तू अनहद की जनकार सुना सुन ले ला कान तू गुरु बिना युगान न होवर सुन मानव न दान तू अनहद की जनकार सुनावे सुन ले ला कान ओ गावरा ग्रस लावा पे गावरा ग्रस लावा पे मुर्दी की ये दुन प्यारी अगम निगम से पार करायो मिटता है संकट भारी
1: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हरियाणवी लोकगीत का श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी लोकगीत का कार्यक्रम बाजाई नगाड़ा जिसमें हमारे आज के कलाकार थे नन्हा राम गिल एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार 8:15 पर सुनिएगा अंग्रेजी समाचार जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसन स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियाँ अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
7: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
8: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला। देशबंधु की सुर्खी है, गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप सभी श्रोताओं को महक का प्यार भरा नमस्कार। कभी चुपके से मुस्कुरा कर देखना, दिल पर लगे पहरे हटा कर देखना, ये जिंदगी खिलखिला उठेगी, खुद पर कुछ लम्हे लुटा कर देखना।

दोस्तों, क्या आपने एक बात पर गौर किया है? जब भी कभी तेज बारिश या आंधी आने वाली हो या मौसम में बदलाव आने वाला हो, तो कुछ समय पहले हमारे फोन पर अलर्ट मैसेज आ जाते हैं ताकि हमें मौसम का पूर्वानुमान हो जाए, हमें पहले से मौसम की थोड़ी जानकारी हो जाए और हम थोड़े सावधान हो जाएं। और हमारा जो आज का प्रश्न है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। और आज आपको बताना है कि मिशन मौसम जो है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। आज आपको बताना है मिशन मौसम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और इस प्रश्न का जवाब हमारे श्रोता हमें दे सकते हैं हमारे केंद्र के नंबर 9466021336 पर SMS के माध्यम से 8:45 तक। और श्रोताओं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक मैसेज में केवल 3 ही नामों को शामिल कीजिएगा और एक ही बार मैसेज कीजिएगा।

दोस्तों आइए अब आपको जानकारी देते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में। दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 में मुख्य रूप से 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। दोस्तों यह दिन हर साल मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है ताकि प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके प्रवास के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। दोस्तों प्रवासी पक्षी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र यानी हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 में 40% पक्षी प्रजातियां जो हैं वो घट रही हैं और इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन को मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों की आवासों की रक्षा करना और सीमा पार उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। दोस्तों 2026 की जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है वो है एवरी बर्ड काउंट्स योर ऑब्जर्वेशन मैटर, यानी हर पक्षी मायने रखता है, आपका अवलोकन महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये थीम प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में कम्युनिटी साइंस की भूमिका पर जोर देती है जो लोगों को पक्षियों की प्रजाति के बारे में डेटा एकत्र करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों आपको इस बारे में देंगे और भी जानकारी, आइए कार्यक्रम में साथ ही हो जाए थोड़ा मनोरंजन भी।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे थे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में, और आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से हम पक्षियों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, देशी प्रजाति के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, जंगली फूल और घास आदि हम लगाकर इनकी मदद कर सकते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर या हमारे आसपास जो भी जगह हैं, कोई खाली प्लॉट हैं, वहाँ पर उन्हें इन पक्षियों के लिए सुरक्षित बनाएं, उनके लिए वहाँ पर उनके लिए थोड़ा दाना पानी की व्यवस्था करें। यदि गांव में आपके पास कोई ग्रामीण क्षेत्र में कोई संपत्ति है तो वहाँ पर पक्षियों को भोजन और आवास प्रदान करने के लिए, मदद करने के लिए बाढ़ की कतारों और बिना कटी नालियों और प्राकृतिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करें। यदि आप किसी अपार्टमेंट में भी रहते हैं तो भी हम बालकनी में कोई गमला रखकर या थोड़ा पानी रखकर इनकी मदद कर सकते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि खेतों में जो कीटनाशक और खरपतवार जो है वो प्रयोग होते हैं उनका उपयोग अगर कम हो तो इससे जो इन पक्षियों को है वो मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि किस तरह से हम प्रवासी पक्षियों की थोड़ी मदद कर सकते हैं, और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, कार्यक्रम में हमने आपसे प्रश्न किया था कि मिशन मौसम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो आइए अब आपको बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब और उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें आज के प्रश्न का जवाब दिया है। दोस्तों, इसका सही जवाब है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। मौसम निगरानी को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे मिशन मौसम के तहत भारत में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या में 250% की वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, DWR यानी डॉपलर मौसम रडार जो है वो डॉपलर प्रभाव पर काम करता है, जो बारिश की बूंदों जैसी वस्तुओं की गति के कारण आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को मापता है। दोस्तों, मिशन मौसम जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 2024 में शुरू किया गया था और इसका कार्यान्वयन भारतीय मौसम विज्ञान, राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान द्वारा किया जाता है और इसका उद्देश्य भारत को मौसम के लिए तैयार और जलवायु के प्रति जागरूकता बनाना है। और हाल ही में इसमें मौसम डॉपलर मौसम रडारों की संख्या में 250% की वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, ये थी जानकारी मौसम मिशन के बारे में और आइए अब आपको बताते हैं उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें आज के प्रश्न का सही जवाब दिया है। योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अम्बाला से आप हैं, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, गुरशब्द सिंह राहुल, नाहन हिमाचल प्रदेश से योगी ठाकुर, रीमा ठाकुर, फालसंडा जाटान कुरुक्षेत्र से आप हैं, विक्रम योग भारती, संध्या सैनी, हरमन योग भारती, छत्तीसगढ़ पथरिया भरीवा से चंदूलाल सिंह रोल, नारायणी सिंह रोल और वान्या सिंह रोल, और हमें सही जवाब दिया है गांव ढानी कुतुबपुर हांसी से रामधारी अवाना, अनाया अवाना और ओजस अवाना ने। और आप हैं हमारे अगले श्रोता हैं महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे और शीला धनजे, शनि मंदिर चौक खंडवा से आप हैं दुर्गा प्रसाद सैनी, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से आप हैं सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह, और हमें सही अगला जवाब हमें दिया है गांव पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आप हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा और पूनम वर्मा, और जिला सरमौन हिमाचल प्रदेश से आप हैं, ग्राम पंचायत नेहर सबार जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश से आप हैं विनोद तोमर, संजू देवी, ममता देवी, और इसी के साथ हमें सही जवाब दिया धुलिया महाराज से आप हैं अशोक कवाड़े, आदित्य कवाड़े, दीपमाला कवाड़े, दरियापुर बाबली महाराज से गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले, MLB रोड ग्वालियर से आप हैं सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कृति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा जी आपका नाम हो गया है। और अगले जो हमारे श्रोता हैं आप हैं खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, और हमें सही जवाब यह है सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से आप हैं फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन और हेयांश कुमार चंदन, कुरुक्षेत्र से गौतम, चंडीगढ़ से आप हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से आप हैं माघीराम सैनी, पूनम सैनी, कदुआपड़ा जगत सिंहपुर ओडिशा से हमें सही जवाब भेजा है कविता साहू और प्रमोद कुमार साहू ने, छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से आप हैं मोहम्मद जाहिद अली सैफी, मोहम्मद जुहान सैफी वेलफेयर और लीबा मलिक, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से आप हैं रविंद्र

सिंह छाबड़ा, ध्वनि और सानवी। और हमें सही जवाब यह है कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से आप हैं सुरेंद्र दत्ता बंटी शंटी। हमारे अगले श्रोता हैं, आप हैं गांव भाणा ब्राह्मणा वाला नरवाना से मेघराज शर्मा, अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायणलाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू और दिवेंद्र प्रताप साहू। इसी के साथ हमें जवाब दिया है आप हैं सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से सरोज सैनी, राकेश सैनी और यादवेंद्र सैनी। वंडिंग खेड़ा पंजाब से आप हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से आप हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून, निशा और यश मंसूरी। और हमें सही जवाब दिया है आप हैं एटा रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम और सरिता गौतम। अनारकली बाजार जगराओं से आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक और गव्या मल्होत्रा। गांव चोहलदा बागपत से आप हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से आप हैं कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता और आयुषी गुप्ता। गांव सातड़ी से ईश्वर दयाल कम्बोज, लाजवंती कम्बोज और भव्य कम्बोज। पुराना तालाब डूमराव से आप हैं वलीउल्लाह अंसारी और बक्सर बिहार से आप हैं राज एस टी अंसारी। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े और करुणा कांबड़े। सोंगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से आप हैं कोमल सेन, तोषण सेन और विनायक सेन। और हमें सही जवाब दिया है आप हैं बेंगलोर से सुधा नारायण। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं मुकेश बाता, नीलम बाता। नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव। सोलन हिमाचल से आप हैं टिया और कृष्णा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और अमित कुमार राय। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खौरवाल, कमला रानी और गीतिका भानु। इसी के साथ हमें सही जवाब दिया है रावर करनाल से आप हैं ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। शरकपुर तहसील बराड़ा जिला अम्बाला से राजीव कुमार निरंकारी, गोल्डी निरंकारी और विनोद निरंकारी। बलोदा छत्तीसगढ़ से आप हैं दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम और आनंद पटेल। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा। पाकुड़ झारखंड से आप हैं उत्तम कुमार भक्त, श्वेता भक्त, कीसु। बोर खेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से आप हैं विनोद मुणत, नेहा जैन और दीपक। गांव हांडी खेड़ा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा। बिहार स्टेट से आप हैं डब्लू उल्लाह बेलदार, वली उल्लाह बेलदार और सोनम उल्लाह बेलदार। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राजेश साबले पाटिल। देर पाटन गुजरात से आप हैं धीरज वीरबारी। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु। और जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश से आप हैं विनोद तोमर, संजू देवी, ममता देवी। सौराष्ट्र राजकोट से प्रवीण भाई गुजराती, जगदीश भाई गुजराती और हिरेन भाई। ऊपरकोट बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद दब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज। बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार भारशंकर, श्रीमती प्रिया भारशंकर और कुमारी समीक्षा भारशंकर। और इसी के साथ हमें सही जवाब दिया है आप हैं मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से अंग्रेज संदीप दत्ता बंसी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। गांव जेवरा हिसार से आप हैं वीरेंद्र भयान, सुरेंद्र भयान और शमशेर भयान। गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार कम्बोज, वंश और भुवेश कुमार कम्बोज। और इसी के साथ हमें सही जवाब दिया है आप राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार। गंज डुंडवारा से आप हैं मोहम्मद, रेलवे रोड गंज डुंडवारा से आप हैं मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज और बेबी फातमा गाजी। गांव बंद बगेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले। जठार पेठ अकोला महाराष्ट्र से पूनम गोरे, स्मित गोरे और श्रेयांश गोरे। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास आवास

कास्ट कासगंज उत्तर प्रदेश से आप हैं पवन गौड़, सुयश गौड़ और आशीष गौड़, और हमें सही जवाब दिया है आप हैं रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, और कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा और निखिल वर्मा, जालंधर से आप हैं रोशन जहां, नुसरत जहां और तबस्सुम जहां, क्लासिक रेडियो श्रोता संघ बकानी खुर्द झालावाड़ राजस्थान से आप हैं राजेश कुमार मेहरा, गांव सातड़ी से जी आपका नाम हमने बोल दिया, दुर्गा कॉलोनी हांसी से आप हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी और सुभाष योगी, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहानकर, निर्मला नहानकर और विशाल नहानकर, बलोदा छत्तीसगढ़ से आप हैं दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगवाल से भारत राम पड़ोती, जयंती पड़ोती और हेमंत पड़ोती, कोरासी छत्तीसगढ़ से आप हैं पवन क्रांति साहू, पंकज साहू और सुष्मिता साहू, इसी के साथ हमें जवाब दिया है आप हैं गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हमें सही जवाब दिया है आप हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और हीना, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े और करुणा कांबड़े, गिरिडीह झारखंड से आप हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आप हैं आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर, हांडीखेड़ा से आप हैं राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा, और हमें सही जवाब दिया आप हैं शाहू नगर यवतमाल महाराष्ट्र से मनवर, राजाजी नगर बेंगलोर से आप हैं एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, बेंगलोर से आप हैं जयश्री सुनील, और हमें सही जवाब दिया आप हैं अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा खान, आयशा सबीहा, अनस, बीड़शहर महाराष्ट्र से आप हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, अंजलि करवा, गुमथला यमुनानगर से डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर आरुषि, बेबी राधिका, और ये थे उन सभी श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें आज के प्रश्न का सही जवाब दिया है। तो दोस्तों ये थी अभी हमने आपको दी प्रश्न के बारे में जानकारी, जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका हमने आपको सही जवाब भी बताया और उन श्रोताओं के नाम भी बताए जिन्होंने हमें आज के प्रश्न का सही जवाब दिया है। तो चलिए अब कार्यक्रम में थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत।

दोस्तों आइए आपको जानकारी देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के बारे में। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत के साथ साथ भारतीय कला को भी प्रासंगिक आधुनिकतावाद के माध्यम से एक नया रूप दिया। दोस्तों अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ, जबकि बंगाली कैलेंडर के अनुसार यह 9 मई को रहेगा, 9 मई को है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती स्थानीय बंगाली कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में उनके माता पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के घर हुआ। बंगाली कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म वैशाख महीने में 1422 बंगाली संवत में हुआ था। कोलकाता में टैगोर जयंती को 25वें वैशाख के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों उनका परिवार न केवल समृद्ध था बल्कि बौद्धिक रूप से बहुत उन्नत था। उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर एक प्रख्यात दार्शनिक और ब्रह्म समाज के स्तंभ थे। बचपन से ही उन्हें घर में कला, संगीत, साहित्य का ऐसा वातावरण मिला जिसने उनकी बहुमुखी प्रतिभा की नींव रखी। शुरुआती दौर में उन्हें केवल रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से ही पहचाना जाता था। टैगोर शब्द उनके मूल उपनाम का कोई नया संस्करण नहीं बल्कि ठाकुर का आंगल रूपांतरण है। दोस्तों आपको बता दें कि रविंद्रनाथ के नाम के साथ टैगोर स्पेलिंग स्थानीय होने के पीछे सबसे बड़ा कारण उन्होंने 1913 का नोबेल पुरस्कार था। जब उन्हें साहित्य के क्षेत्र में विश्व का यह सर्वोच्च सम्मान मिला तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, नोबेल कमेटी और पश्चिमी प्रकाशकों ने रविंद्रनाथ टैगोर नाम का ही उपयोग किया और इस वैश्विक कवरेज ने टैगोर उपनाम को पूरी दुनिया में उनका स्थायी पहचान बना दिया। स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग को लेकर कभी कोई विशेष आग्रह या विरोध नहीं किया। उनके लिए ठाकुर और टैगोर दोनों ही उनके पारिवारिक मूल को दर्शाते थे। उन्होंने इस भाषाई बदलाव को सहजता से स्वीकार किया। दोस्तों आपको इस बारे में और भी जानकारी देंगे कार्यक्रम में, आइए साथ ही थोड़ा मनोरंजन हो जाए और आपको सुनवाते हैं ये गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य, संगीत, कला और शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रतिभा थे। वे एक मानवतावादी विचारक थे जिन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था और उनका अटूट विश्वास था कि विद्यार्थियों को प्रकृति के करीब रहकर ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं को दो अलग अलग देशों ने अपना राष्ट्रगान बनाया। उनकी कुशाग्र बुद्धि ने न केवल भारतीय बल्कि विदेशी साहित्य, दर्शन और संस्कृति को भी आत्मसात किया था। 1913 में उनकी कालजयी कृति गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे जिनमें मध्यम वर्गीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। उन्होंने अपनी पहली कविता केवल 8 वर्ष की आयु में लिखी थी। उनकी कविताओं में प्रकृति से लेकर आध्यात्मवाद के विभिन्न रंग मिलते हैं। उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की जो आज बांग्ला संस्कृति का अटूट हिस्सा हैं। उनके गीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से प्रभावित और मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं है, चाहे वह कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो या गीत हो, जिसमें उन्होंने अपनी सशक्त कलम का परिचय ना दिया हो। दोस्तों, मानवता की सेवा और साहित्य साधना करते हुए 7 अगस्त 1941 को उनका देहावसान हो गया था। और ये थी जानकारी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में।

दोस्तों इसी के साथ दीजिए इजाज़त, कार्यक्रम सुबह सवेरे अब यहीं संपन्न करने की। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है आपकी बात आकाशवाणी @gmail.com।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे FM बैंड 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वरांजलि।

कार्यक्रम स्वरांजलि की शुरुआत में आइए सुनते हैं गुरु रंधावा की आवाज में ये गीत।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: ये आकाशवाणी है,
5: हर पल आपके साथ।
4: समाचार हो या सदाबहार गीत,
5: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
4: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
5: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
4: आकाशवाणी।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स ओटी

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: दोस्तों अभी आपने सुने कार्यक्रम स्वरांजलि में संदेश, और आइए कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं गुरदास मान की आवाज में।

1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये

उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

दोस्तों आज का कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र लेकर हाजिर हूँ मैं महक, आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में हम हर दिन करते हैं अपने श्रोताओं से बातचीत और आपको सुनवाते हैं आपके पसंदीदा गीत, आपके फरमाइशी गीत, और साथ ही कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं जानकारी। तो दोस्तों आज विषय है क्या होता है प्रजातंत्र और धर्म निरपेक्षता, और इसी के साथ साथ जो दूसरा विषय है वो है संतुष्टि जीवन में अति आवश्यक है, और इन्हीं बातों पर हम आपको देंगे जानकारी, आपसे करेंगे बातचीत। और जब तक हमारे श्रोता

हमें फोन मिलाते हैं, तब तक के लिए हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। और श्रोताओं, फोन मिलाने के लिए हमारे केंद्र का नंबर है 221-322 और कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड 0-17-44 लगाना ना भूलिएगा। और तब तक के लिए सुनिए ये गीत।

दोस्तों, संतुष्टि हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। संतुष्टि हमारे जीवन का वह अनमोल भाव है जो हमें भीतर से शांति और खुशी देता है। दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो हर व्यक्ति अधिक पाने की दौड़ में लगा हुआ है। जितना हमारे पास है हमें उसमें संतुष्टि होती ही नहीं, जितना है उससे ज़्यादा पाना है, उससे ज़्यादा पाना है। धन, प्रसिद्धि, सुविधाओं के पीछे भागते भागते कई बार हम हमारे पास जो है उस सबको तो भूल ही जाते हैं, है ना। और ऐसे में संतुष्टि हमें सिखाती है कि जो हमारे पास है हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि जो संतुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा शांत और खुश रहता है। वो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, जलन नहीं करता और ना ही छोटी छोटी बातों से दुखी होता है। लेकिन दोस्तों, संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि मेहनत करते हुए हम अपने मन को शांत रखें, सकारात्मक बनाए रखें और ईश्वर का धन्यवाद करते रहें। कहा भी जाता है संतोषी सदा सुखी। यदि हमारे मन में संतुष्टि होगी तो हम जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति को भी धैर्य और आत्मविश्वास से जीत पाएंगे। दोस्तों, संतुष्टि हमें मानसिक शांति, अच्छे संबंध और सच्ची खुशी देती है, क्योंकि सच्चा सुख जो है वो बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे मन की संतुष्टि में होता है। और दोस्तों, अभी हमारे पास एक श्रोता की कॉल आई है, तो आइए हम करते हैं श्रोता से बातचीत। हेलो हेलो हेलो दोस्तों, हमारे पास अभी एक श्रोता की कॉल आई थी, हमारी उनसे बातचीत तो नहीं हो पा रही है, लेकिन उन्होंने सुनना चाहा था राम तेरी गंगा मैली फिल्म का टाइटल सॉन्ग। तो आइए, उनकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं हमारे साथ कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में? हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं जी? आपका शुभ नाम बताइए, आपका
1: क्या कह रहे हो? मैम
0: शुभ नाम बताइए
1: टिंकू है,
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं पीपली से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा जी, टिंकू जी क्या करते हैं आप?
1: मैं घर पे ही रहता हूँ।
0: अच्छा जी,
1: हाँ जी, चोट सी लगी हुई है ना टांग में। मैं
0: हाँ जी।
1: तो चोट लगी हुई है, थोड़ा घर पे रहता हूँ अभी। कार्यक्रम
0: अच्छा, तो आप आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: सारे सुनते हैं मैम, 6 बजे चला देता हूँ सुबह।
0: हाँ जी।
1: हाँ जी, परिवार
0: अच्छा जी, और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: में अभी भाई है, भाभी है, जगदीश जी हैं जी, मम्मी डैडी हैं।
0: अच्छा जी। जी आपने कार्यक्रम में आज फोन किया, तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम धड़कन की लोन सुना दो। हाँ
0: धड़कन फिल्म से गीत के बोल बताइए
1: जी, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है।
0: जी। हम आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत, आनंद लीजिए इस गीत का।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो। हाँ
0: हाँ जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में?
1: जी जी
0: हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: शामगढ़ से। हाँ
0: शामगढ़ से।
1: हाँ जी
0: जी, आपका शुभ नाम?
1: राजेश कुमार जी।
0: अच्छा जी, राजेश कुमार जी, क्या करते हैं आप?

0: मैं बस चलाता हूँ करनाल से शाहबाद प्राइवेट।
1: अच्छा जी, और आपके परिवार में कौन कौन है?
0: क्या जी?
1: आपके परिवार में कौन कौन है?
0: क्या जी?
1: आपके परिवार में कौन कौन है?
0: मेरे मम्मी दीदी है समता।
1: हाँ जी,
0: चार बेटी है एक लड़का।
1: अच्छा जी जी, कौन
0: चार
1: सा
0: बेटी है एक लड़का।
1: अच्छा जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप
0: जी?
1: कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
0: राजा हिंदुस्तानी का
1: जी। गीत के बोल बताइए।
0: कितना अच्छा मेरा प्यारा राजा हिंदुस्तानी
1: जी। हम आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, आनंद लीजिए अपने इस पसंदीदा गीत का।
0: ठीक है।

0: जोकर।
1: हेलो हेलो हेलो हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र?
2: हाँ जी,
1: कौन से श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र?
2: मैं समीर जी,
1: शमी जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैं शामगढ़ से बात कर रहा हूँ मैडम जी।
1: अच्छा जी, आपका पहली बार फोन लगा है हमारे कार्यक्रम में?
2: हाँ जी, पहली बार लगा
1: है। अच्छा जी, तो कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
2: मैं यही सुनता हूँ।
1: हाँ जी,
2: हेलो फरमाइश सुनता हूँ जी।
1: अच्छा जी, तो फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम पसंद हैं आपको? हेलो।
2: हाँ जी,
1: फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम पसंद हैं आपको?
2: हाँ जी, हाँ जी
1: जी। क्या करते हैं आप शमी जी?
2: मेरा सैलून है शामगढ़ में।
1: अच्छा जी, तो बताइए, आज आपने फोन मिलाया है, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र?
2: मैं प्रतिज्ञा फिल्म का गाना सुनता
1: जी। गीत के बोल बताइए।
2: जट या मल्ला पगला दीवाना।
1: अच्छा जी, तो हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत जी। कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

गले में अकेले तेरी बाजार सर में कौन सा बनाया ना बहाना बहाना बहाना मैं जत यमला पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के के के ओ मैं

किसी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, है जट यमला पगला दीवाना।

0: हेलो
1: नमस्कार जी।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन से श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम में?
1: गांव गड़ी पटाहा जिला पंचकुला से सराजुद्दीन अंसारी बोल रहा हूँ।
0: जी सराजुद्दीन अंसारी जी, कैसे हैं आप?
1: अल्लाह का शुक्र है। और आप सब
0: जी? हम भी अच्छे हैं। गीत के बोल बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: ये करोजी फिल्म से सुना दीजिए जी, लड़की तुम्हारी कुमारी रह जाती जी, मानो हमारा एहसान के लड़के ने हाँ कर दी।
0: अच्छा जी, तो आपकी पसंद पर गीत तो हम आपको सुनवा ही देंगे। आप ये तो हम जानते हैं, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, बहुत समय बाद आपका फोन लगा है ना?
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो आप ये गीत सुनना चाह रहे हैं क्रोधी फिल्म से?
1: ओके मैम।
0: हाँ जी, तो हम आपकी पसंद पर आपको सुनवाते हैं ये गीत।
1: थैंक यू मैम
0: जी।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हेलो
6: हेलो,
5: हाँ जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम नमस्ते?
6: हेलो
5: हेलो,
6: नमस्कार जी।
5: नमस्कार जी, कौन से श्रोता जुड़े
6: हैं? ब्रिजपाल बोल रहा जी, गांव राम सावरा जिला सहारनपुर
5: जी। ब्रिजपाल जी, कैसे हैं आप?
6: हम तो ठीक है, बहन जी आप सुनाओ। मैं बहन जी आ गई ना।
5: हाँ जी जी, हम भी अच्छे हैं।
6: आप सुनाओ जी, आकाशवाणी परिवार कैसा है?
5: जी हम भी अच्छे हैं, आकाशवाणी परिवार में भी सभी अच्छे हैं। आप कब से आकाशवाणी परिवार से जुड़े हुए हैं जी? कब से आप आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम सुन रहे हैं?
6: मैं तो जी 2008 से हुए जी।
5: अच्छा जी, तो कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
6: एक तो ये सवेरे आपका है जी, जब मैं प्रश्न पूछा जा जी।
5: हाँ जी, सुबह सवेरे
6: जी, सुबह सवेरे जी।
5: अच्छा,
6: और
5: जी।
6: इसका लेकर जो है 11 बजे तक, और फिर 5 बजे से लेकर जी जो वाणी आता है, और रात के 11 बजे तक आता है
5: जी। शाम के कार्यक्रम सुनते हैं फिर आप?
6: जी जी, सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
5: अच्छा जी, लगभग सभी कार्यक्रम सुनते हैं आप आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के?
6: जी जी जी।
5: हाँ जी, तो बताइए फिर आज नमस्ते कुरुक्षेत्र में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
6: मेरा साया फिल्म है जी।
5: अच्छा जी, गीत के बोल बताएं।
6: हाँ जी, मेरा झुमका जी रावरेली के बाजार में।
5: अच्छा जी, तो आप
6: बहन जी एक नाम लूंगा।
5: हाँ जी,
6: हमारे बड़े भाई है।
5: अच्छा जी,
6: धन्यवाद
5: जी। तो आपकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं मेरा सा फिल्म से गीत। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
6: धन्यवाद।
7: Thank you.

दोस्तों आइए अब आपको जानकारी देते हैं कि क्या होता है प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्षता। दोस्तों प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्षता शासन व्यवस्था और समाज के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये दोनों धारणाएं नागरिक स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित हैं। दोस्तों प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। इसमें लोग मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और समान अधिकार प्राप्त होते हैं। और दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता बल्कि सभी धर्मों को समान महत्व देता है। जिस तरह से भारत में हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। दोस्तों सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार को ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है और एक जीवंत प्रजातंत्र के लिए धर्मनिरपेक्षता बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक अधिकार धार्मिक विश्वास पर निर्भर ना हो, और ये दोनों ही धारणाएं समानता और नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं। दोस्तों ये थी जानकारी कि क्या है प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्षता, और आइए अब कार्यक्रम में चलते चलते हम आपको सुनवाते हैं ये अंतिम गीत।

दोस्तों अब समय हो चला है कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने का, तो इसी के साथ दीजिए इजाजत कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र अब यहीं संपन्न करने की। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है आपकी बात @akashvani@gmail.com। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र, FM बैंड 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित अन्य कार्यक्रम। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

ये सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में ये गजल।

यह आवाज थी तलत महमूद की और कलाम था एहसान मिर्ठी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गजल।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की लिखी गजल अभी आपने सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और ये फिल्म थी गजल।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही है हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

सुरैया की आवाज थी और फिल्म का नाम था मिर्जा गालिब। गुलाम मोहम्मद की संगीत निर्देशन में ये गालिब की रचना थी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। खय्याम साहब की संगीत निर्देशन में बशर नवाज का लिखा कलाम है ये, आवाज भूपेंद्र की और फिल्म का नाम है बाजार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा

0: होता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने की

पेशी खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। शहरयार साहब की ये रचना है, सुरेश वाडेकर की आवाज में, फिल्म गमन से हमने ली है। संगीतकार हैं जयदेव।

सुरेश वाडेकर की आवाज में अभी आपने फिल्म गमन की यह गजल सुनी, और इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शंकर हुसैन की ये गजल सुनवा रहे हैं, रचना जानेसार अख्तर की और संगीत खयाम साहब का।

लता मंगेशकर की गाये फिल्म शंकर हुसैन की इस गजल के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। और आज दोस्तों हम आपको बता दें, आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। यानी जो 2026 की थीम है वो है हर पक्षी मायने रखता है, आपका अवलोकन महत्वपूर्ण है। तो ये जो पक्षी हैं वो वाकई हमारे जीवन में, इस समाज में, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत मायने रखते हैं। और फिल्मी दुनिया में भी गीतकारों ने, फिल्मकारों ने इन पक्षियों को अपनी फिल्मों में स्थान दिया है। तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत मधुर गीत जहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्षी का जिक्र है। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म आग का गीत। गीतकार हैं बहजाद लखनवी और संगीत राम गांगुली का है। हम आपको बता दें 1948 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म है ये आग, जो बहुत ही लोकप्रिय और भावनात्मक फिल्म रही और बहजाद लखनवी ने इसमें गीत लिखे और राम गांगुली ने इसका जो संगीत पक्ष है उसे संगीतबद्ध किया। ये गाना नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया गया था। दोस्तों ये गाना विरह और पुरानी यादों के दर्द को कोयल की आवाज के साथ जोड़ता है। जैसे कि देखिए ना, कोयल की बोली हमें सुकून देती है ना। कोयल की जो मिठास है वो दिल को भाने वाली होती है। लेकिन जब आप परेशान होते हैं, प्रेम में डूबे होते हैं, विरह में होते हैं, तो ये आवाज भी हमें खलती है। बस यहाँ नायिका की यादों को जगाकर उसे शोर के रूप में ये कोयल की आवाज नायिका को प्रतीत हो रही है। तो ये गीत जो है फिल्मों के शुरुआती दौर के सबसे भावपूर्ण गीतों में से एक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शमशाद बेगम की आवाज में अभी आपने फिल्म आग का ये गीत सुना। गीतकार थे बहजाद लखनवी और संगीतकार थे राम गांगुली। हमारी फिल्मों में हमारे गीतकारों ने जिन गीतों को लिखा उसमें पक्षियों को कई बार प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म माया का, लता मंगेशकर ने इसे आवाज दी है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और सलील चौधरी की धुन है। वियोग अकेलेपन और पुरानी यादों के साथ साथ एक नई शुरुआत को दर्शाता है ये गीत। दोस्तों आपने फिल्म देखी होगी माया, जहां माला सिन्हा और देवानंद पर ये गीत फिल्माया गया है और माला सिन्हा और देवानंद की जो जोड़ी है बहुत ही खूबसूरत लगती है। यह गीत गहरे दुख और अकेलेपन को दर्शाता है और पंछी यानी प्यार या उम्मीद जिसे हम कहते हैं वहां से जाने को कहता है कि जहां बाहर है वहां तुम चले जाओ, जहां खुशियां हैं वहां चले जाओ पंछी, क्योंकि यहां तो सिर्फ दुख ही दुख है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म माया का ये खूबसूरत गीत।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं, क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार 2

0: फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मन चाहे गीत कार्यक्रम, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19,750, मुंबई 400091। मन चाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: जी हाँ, मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दोपहर 3 बजे। तो दोस्तों, मैटिनी शो में आज हम बात कर रहे हैं पंछियों पर, कि किन गीतकारों ने किन किन फिल्मों में इन पंछियों का सहारा लिया। 1950 की एक फिल्म है बाबुल, उस फिल्म का एक गीत आपको याद होगा, पंछी बन में पिया पिया गाने लगा। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है, एक अमर प्रेम गीत बन गया है और इसे महान संगीतकार नौशाद साहब की धुन पर शकील बदायूं ने लिखा था और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। ये गीत नायिका की पहली प्रेम की अनुभूति और उसके खिलखिलाते हुए मन की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। मतलब इस गीत का जो मूल भाव है वो विरह या दर्द नहीं, बल्कि पहली बार हुए प्रेम का उत्साह और आनंद है। जब नायिका को अपने प्रिय से प्रेम हो जाता है तो उसे पूरी प्रकृति में प्यार का संगीत सुनाई देता है। और जहां तक बात है कि पिया पिया गाने लगा पंछी बन के मन, तो जहां तक हम समझते हैं गीतकार के लिखने का उद्देश्य रहा होगा कि इस गीत में पंछी को नायिका के मन की स्वतंत्रता और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में गीतकार ने दर्शाया होगा कि जैसे जंगल में पंछी अपने साथी को पुकारता है, और पंछी के माध्यम से कवि ने ये दर्शाया है कि प्रेम में बंधने के बाद नायिका का मन, जो पंछी रूपी मन है, वो सांसारिक बंधनों को छोड़कर अपने प्रेमी की दुनिया में उड़ जाना चाहता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है बाबुली।

जी तो दोस्तों, मैटिनी शो में अब हम आगे बढ़ते हैं और फिल्म चोर मचाए शोर, जो कि 1974 की फिल्म है, उसका एक गीत है, कौन सा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, एक बेहद प्यारा और रोमानी युगल गीत है। और इस सदाबहार गाने में जो नायक और नायिका है, शशि कपूर और मुमताज के बीच के प्यारे पलों को दिखाया गया है। और जहाँ तक गीत की बात है, लगता है कि ये गीत रूपक के माध्यम से कुछ बातें कहता है। जैसे कि गाने में तोता और मैना दो अलग अलग डालियों पर बैठे हैं, जो नर और मादा के एक प्रतीकात्मक रूप है, और ये इस बात पर दर्शाता है कि भले ही प्यार में आप दूर हो, लेकिन जो प्यार है, बीच का प्यार है, वो अटूट और सच्चा होता है। गीतकार ये कहना चाहता होगा कि भले ही प्रेमी प्रेमिका तोता मैना के रूप में दूर दूर बैठे हों, लेकिन प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्यार है वो अटूट और सच्चा है। और तोता और मैना के उदाहरण से गीतकार ये समझाना चाहते हैं कि दो लोगों का जीवन एक दूसरे के साथ ही संपूर्ण होता है, और एक के बिना दूसरे की कल्पना अधूरी लगती है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आवाज़ी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस पर इंडिया में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जान कित

मैटिनी शो की आखिरी पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया का गीत। प्यार, वियोग और संदेश भेजने की जिस तरह से मासूम भावना को दर्शाता वह ये गीत है कबूतर जा जा जा। और ये गीत मुख्य रूप से नायिका द्वारा नायक को अपने दिल की बात पहुंचाने की तड़प को दिखाता है। नायिका एक कबूतर को अपना प्रेम दूत बनाती है और उसे अपने प्रेमी के पास पहले प्यार की पहली चिट्ठी ले जाने को कहती है। आइए सुनते हैं असद भोपाली का लिखा ये गीत जिसे संगीत में ढाला है राम लक्ष्मण ने।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रही हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना

0: प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान 4थे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज तलत महमूद साहब की याद का दिन है, तो इस कार्यक्रम में आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत सुना। स्वर तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था छाया। कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर का ही गाया हुआ ये फिल्म है उसने कहा था। गीतकार हैं शैलेंद्र और

कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद की आवाज में फिल्म दाग से सुनिए। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। स्वर थे तलत महमूद और शमशाद बेगम की। फिल्म का नाम था बाबुल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने के

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जब जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सुजाता से सुनिए, आवाज तलत महमूद की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म फुटपाथ का गीत। तलत महमूद ने इसे आवाज दी है। सरदार जाफरी की रचना और खयाम साहब की धुन है।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार।
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनको प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर
2: तलत महमूद की आवाज में फिल्म संग दिल का गीत सुनिए, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सज्जाद हुसैन का संगीत।

शंकर जयकिशन की संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत सुनिए। युगल स्वर तलत महमूद और आशा भोंसले की ये फिल्म है बूट पॉलिश।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने की

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म टैक्सी ड्राइवर से हमने लिया है। इस गीत को आवाज तलत महमूद ने दी है, रचना साहिर लुधियानवी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में शकील बदायूं का लिखा गीत। तलत महमूद की आवाज है और ये फिल्म है दिले नादा।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, बस थोड़ी देर में।

तो लीजिए सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए यानी सुरीला सफर करने के लिए तैयार बैठे हैं। सफर में हमारे साथ है ना आप? तो इस सफर में चलने की तैयारी आपने कर ली है हमेशा की तरह।

रुकिए रुकिए रुकिए, पहले आज की इबारत तो पढ़ लीजिए। पढ़ ली आपने? अच्छा, जो लोग फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो हमारी इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन वो दोस्त, वो श्रोता जो फेसबुक पेज से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें हम बता दें आज की इबारत है, एक बेनाम जिंदगी जीते हुए आदमी बेशक मुख्य धारा से दूर हो सकता है, पर किसी की आत्मीय पुकार उसमें मोह का बीज पैदा कर सकती है, तब वो मुसाफिर पुरानी गली छोड़ जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हुए सफलता की चोटी छू सकता है। बहुत ही सीधी साधी इबारत है आज की, है ना? लेकिन हमारे श्रोता परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए हमने आज ये कोशिश की है कि आज इस इबारत में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन पर आधारित है हमारे आज के गीत, उनका जिक्र भी हम कर देते हैं। हाँ, एक खुशी की बात है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने वो शब्द लिखे भी हैं जो आज की इबारत में हमने रखे हैं। उन सभी श्रोताओं को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज इस इबारत में जो शब्द हैं जिन पर हमारे गीत केंद्रित हैं, वो है आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मुंह, बीज, चोरी और गली। जी, तो इन शब्दों को सुनने के बाद आप टटोलिए अपनी प्लेलिस्ट की, कहीं आपने कुछ गीतों को चुनने में गलती तो नहीं कर दी। हालांकि आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे गीत हमारे श्रोताओं ने चुने हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से यानी हमारी पसंद से मेल खाते हैं। हम शब्दों को एक बार फिर दोहरा देते हैं। आज के शब्द हैं आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मुंह, बीज, चोरी और गली। हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद कुछ कुछ आज मेल खा रही है, और यही एक शुरुआत है इस कार्यक्रम की कि आपने हमारे कार्यक्रम को सुनना, समझना, पसंद करना शुरू कर दिया है। तो आज का सफर शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि आज इस सफर में एक प्रयोग और करने वाले हैं हम। हाँ, वो प्रयोग सीधा साधा है, वो ये कि आज जितने भी गीत हमने चुने हैं वो फिल्मी पर्दे पर किसी गायक या गायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके सहायक कलाकारों ने, डांसर्स ने बैकग्राउंड में फिल्माए गए हैं वो गीत, और ये गीत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हुए हैं। आप समझ गए ना हमारा मतलब फिल्मी पर्दे पर उन गीतों को, जो गीत आज हमने चुने हैं, किसी नायक या नायिका द्वारा उनका लिप मूवमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने होंठ नहीं हिलाए हैं उन गानों पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो होते हैं और डांसर्स जो होते हैं या बैकग्राउंड में उन गीतों को फिल्माया गया है, और वो गीत बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर इस गीत के साथ। ये गीत यकीनन आपकी प्लेलिस्ट में है, हमने देख लिया है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश भर में 11 मई को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे देश भर में मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पवित्र मंदिर के प्रांगण से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार का कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अरुणाई पिहोवा स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। उपायुक्त ने बताया कि इस दिन जिले के सभी मंदिरों को सजाया जाएगा। पलवल जिले में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 21 करोड़ रुपए की लागत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम का नवीनीकरण किया जा रहा है। जिला खेल अधिकारी खुशवंत सिंह ने बताया कि स्टेडियम में फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, एथलेटिक्स ट्रैक, टेनिस मैदान बनाया जा रहा है।
1: पलवल में पहली बार 59 टेलर की नर्सियां लोड हुई, जो कि बहुत बड़ा कदम है सरकार द्वारा। इसमें अब कम से कम 2000 बच्चे सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे। सरकार द्वारा ग्राउंड की सुविधा दी जा रही है। इंडोर स्टेडियम सेंट्रलाइज एसी लग रहा है। ग्राउंड में प्यू फ्लोरिंग कराई जा रही है, उसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स खेला जाएगा। आउटडोर में फुटबॉल, हॉकी ग्राउंड, सिंथेटिक ट्रैक, वॉलीबॉल के सिंथेटिक ट्रैक, इवन टेनिस का ग्राउंड भी बनवा रहे हैं।
0: उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के अनुसार जिले में एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है।

0: रहा है, जो बहरौला गांव में 124 एकड़ जमीन पर विकसित होगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए मुख्यमंत्री मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की है, जिसमें उन्हें प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर भोजन दिया जाएगा। उन्हें दूध व प्रोटीन युक्त चॉकलेट दी जाएगी। चॉकलेट और दूध बच्चों को वार के हिसाब से दी जाएगी, यानी कि एक दिन दूध तो दूसरे दिन चॉकलेट दी जाएगी। करनाल जिले में गेहूं की पराली जलाने के आरोप में 8 किसानों के खिलाफ 9 FIR दर्ज की गई है। करनाल के कृषि उपनिदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि जिले में अब तक पराली जलाने की 172 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 130 घटनाएं आकस्मिक पाई गई, 24 में आग नहीं लगी, 2 घटनाएं वन क्षेत्रों में हुई हैं। उन्होंने बताया कि 9 मामलों में जानबूझकर आग लगाने की पुष्टि हुई है, जबकि 7 मामलों की अभी भी जांच चल रही है। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर सफाई कर्मचारियों की सभी जायज मांगों बारे जल्द ही समाधान करवाने की कोशिश की जाएगी। कैबिनेट मंत्री कल नगर परिषद कार्यालय नरवाना में बुलाई विभागीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने नगर परिषद नरवाना के अंतर्गत आने वाले शहर के मंजूर हुए विकास कार्यों का सिलसिलेवार जायजा लिया और अधिकारियों को इनमें गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नरवाना शहर के संपूर्ण विकास के लिए विकास कार्यों का रोडमैप तैयार किया जा चुका है। भविष्य में सभी विकास परियोजनाओं के पूरा होने पर शहरी तरक्की का नया सफर तय करेगा। मंत्री ने बताया कि पिछले दिनों सदन की बैठक में शहर के विकास कार्यों के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नए नगर परिषद के 46.6 करोड़ रूपये का सालाना बजट पास किया गया है। कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने बैठक के बाद सफाई कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल से भी मिले और उनका मांग पत्र लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगों बारे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जल्द ही समाधान करवाने की कोशिश की जाएगी। हरियाणा राज्य सरकार ने आगामी रबी सीजन के लिए किसानों को समय पर प्रमाणित गेहूं बीज उपलब्ध करवाने हेतु अग्रिम तैयारियां शुरू कर दी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कल उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बताया कि बीज पैकिंग के लिए लगभग 4 करोड़ रूपये की लागत से बैग खरीदने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बीज वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा बीज विकास निगम के लिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन बैग और जूट बैग की खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि सीजन से पहले इन बैगों की अग्रिम खरीद का मुख्य उद्देश्य बीज प्रसंस्करण कार्य को समय पर पूरा करना है, ताकि किसी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने आगे कहा कि प्रसंस्करण और पैकिंग कार्य पूर्ण होने के बाद प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज रियायती दरों पर बुवाई से पहले ही उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त।
1: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मन के उस जटिल रूपांतरण को दर्शाती है जहां एक व्यक्ति शून्यता से पूर्णता की ओर यात्रा करता है। यहां बेनाम जिंदगी केवल गुमनाम ही नहीं बल्कि उस मानसिक अलगाव का प्रतीक है जहां व्यक्ति स्वयं की पहचान खो चुका होता है। तर्क और बुद्धि जहां हार जाते हैं वहां स्नेह की पुकार काम कर जाती है। ये पुकार व्यक्ति के भीतर सोए हुए मुंह या जीने की इच्छा को फिर से जीवित कर देती है। अतीत के दुखों असफलताओं और पुरानी सोच से मुक्त हुए बिना नए शिखर तक पहुंचना संभव नहीं। जब मन में विश्वास अंकुरित होता है तो बाधाएं मार्ग का पत्थर नहीं बल्कि सीढ़ी बन जाती हैं। तो आज के गीत भी आपने लिखे हैं, बेशक मंदिर मस्जिद में बेनाम तुझसे नाराज नहीं, मितवा मुंह मुंह के धागे करके आपने कोशिश की है कुछ गानों की जो हमारी प्लेलिस्ट से या हमारी पसंद से मिल खाते हैं। बाकी आपने जो अपनी इबारत लिखी है वो बहुत खूबसूरत तरीके से पेश की है।

एक श्रोता लिखते हैं कि अगर जीवन नाटक मालूम पड़ने लग जाए तो आदमी अक्सर शांत हो जाता है और दुनियावी धारा से दूर होकर जीने की कोशिश में सिर्फ संघर्ष करता रह जाता है। इसी समय किसी अपने की पुकार उसमें मुंह के धागे जोड़ देती है। एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए वो मुसाफिर अतीत को पीछे छोड़ सफलता के नए आयाम छू लेता है और रेडियो पर बजने लगता है दिल को छूने वाला गीत, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी इबारत लिख रहे हैं और आपने जो गानों का कयास लगाया है वो बहुत हद तक सही भी लग रहा है, लेकिन आपको इस

के लिए पूरा कार्यक्रम सुनना होगा और सुरीले सफर में हमारा साथ देना होगा। आइए सुनते हैं अगला गीत और उसके लिए हम सवाल भी आपसे करने वाले हैं। ये गीत है फिल्म आजाद से, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बतलाना है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, अपलम चपलम, सुना है ना आपने, बहुत ही मशहूर गीत है, किस दिग्गज नृत्य जोड़ी पर फिल्माया गया है, मतलब जो नर्तकी वहां नृत्य कर रही हैं, उनके नाम आपको हमें बताने हैं। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

जी, तो ये स्वर जो आपने सुने बहुत ही खूबसूरत स्वर थे, फिल्म आजाद से हमने लिए थे, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के। पर्दे पर दो नर्तकियां इस नृत्य को करती हैं। हमने आपसे पूछा था कि ये कौन है, किस नृत्य जोड़ी पर ये गीत फिल्माया गया है, आपको उनके नाम बताने हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के सभी श्रोताओं को नमस्कार के साथ, आज का ये गीत मुझे लग रहा है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद ही गाना हो सकता है। कैसे होगा बताइए, गली पर तो अभी आपने जो गाना सुना अपलम चपलम ये हो गया है, तो ये गाना तो हमारी लिस्ट में आज शामिल नहीं है। और दूसरी बात, हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज बहुत तरीके से अपनी लिस्ट बनाई है और कई कई गाने उनको मतलब हमारी पसंद के मुताबिक हमारी पसंद मेल भी खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देने वाला सुंदर परिच्छेद कितनी सहज सुंदर शब्दों में साझा किया है आपने, जो जीवन की निराशा दूर कर देता है और आत्मविश्वास के साथ ये नश्वर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है। आपने कुछ गानों के जिक्र किए हैं, मैं बेनाम हो गया, बिल्कुल सही गाना आपने लिखा था, आगे भी आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, आप देखिएगा ये गाने हमारे यहाँ से बजते हैं इस कार्यक्रम में या नहीं, तो अगर हाँ तो हमारी और आपकी पसंद जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ गाने ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल सही पसंद किए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बातें कम और गाने वो भी पुराने सुनने ज्यादा मिले तो ज्यादा मजा आ जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से उभर कर आने वाले शब्द हैं आदमी पर, आपने बहुत सारी लिस्ट दी है, तो आप भी सुनिएगा आज का ये सुरीला सफर, हमारे साथ इस सफर में आपको बने रहना है और ये देखना है कि आपने जो गाने पसंद किए हैं क्या वो हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने बहुत सारे गानों को पसंद किया है, अब देखना यह है कि आपकी पसंद से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ सफलता किसी के प्यार पाने पर अवश्य ही प्राप्त हो सकती है और ये आत्मीय स्नेह की अनुभूति बेजान जिंदगी में भी जीवन के अनेक रंग भर देती है। ऐसी ही भावनाओं का प्रतिबिंब आज के शब्द गीतमाला में भी नजर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के गीत शायद इस प्रकार से हो सकते हैं, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, आप भी सुनिएगा और इस सुरीले सफर में हमारे साथ आपको बने रहना है, ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए कि आपकी पसंद हमारी पसंद से कितना मेल खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपका सुरीला सफर तय करने के लिए मैं आ गई हूँ, बहुत अच्छी इबारत लिखी है और इस इबारत से आपको कुछ गीत आए हैं याद आ गए हैं जिसका जिक्र आपने हमें किया है। तो आपको बताना क्या है कि फिल्म आजाद का ये जो गीत है इसमें ये नृत्य किन दो नर्तकियों ने किया है, इनके नाम आपको पटापटा में बताने हैं, फिर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और इस गीत को भी आप महसूस करेंगे कि ये किसी नायक या नायिका ने नहीं इसे फिल्मी पर्दे पर गाया है बल्कि समूह स्वर में ये गीत गाया गया है। आपके लिए सवाल ये है कि फिल्म किस्मत का ये गीत किसने गाया है, हम आपको बता देते हैं। इस गीत के गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीत दिया है अनिल विश्वास ने। आइए सुनते हैं ये गीत। अपने जमाने का बेहद मशहूर गीत, आपको इनके गायक कलाकारों के नाम बताने हैं। और इस गाने से क्या शब्द निकलता है, चोटी।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दार्शनिक तथ्यों को उजागर करती है। कहा गया है कि निराश में जीवन में एक क्षीण प्रेम पूर्ण रोशनी मार्ग प्रशस्त कर देती है और मन बरबस आकृष्ट हो उम्मीद के साथ उस तरफ गतिमान हो उठता है, अपनी दृढ़ निश्चय संकल्प संग हासिल कर ही लेता है। इबारत गंभीर है मगर बहुत रोचक संगीत में प्रस्तुति का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम का सुंदर पक्ष है कि मित्रों द्वारा प्रेषित कमेंट जो ज्ञानवर्धक और तथ्यपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आप जो इबारत लिखते हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से कहते हैं और उसे पढ़ने में हमें भी बहुत मजा आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साधारण मनुष्य के सफल होने का राज किसी जादुई फार्मूले में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी आदतों और दृष्टिकोणों में छिपा है जिनमें कोई भी अपना सफर शुरू कर सकता है। सफलता अक्सर असाधारण काम करने से नहीं बल्कि साधारण कामों को असाधारण निरंतरता के साथ करने से मिलती है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ा अंतर निरंतरता का ही है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गीतों को लिखा है कि ये गीत शायद आज की प्लेलिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक लग रहा है, मैं उत्सुक हूँ कि आप लोग कैसे सोशल मीडिया के जरिए श्रोताओं को जोड़ेंगे और कौन से सुरीले गाने सुनवाएंगे। तो आप ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता लगेगा कि कैसे हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का फेसबुक से परिवार जुड़ा हुआ है। आप भी उस परिवार से जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये और इस कार्यक्रम को समझने में हालांकि थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में इतनी ताकत होती है कि आसमान से तारे भी नाचते हुए जमीन पर उतर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बेशक आत्मा की पुकार बड़ी शक्तिशाली होती है, सफल व्यक्ति वही होता है जो इस पुकार को सुनकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलकर अपनी मंजिल को पाता है और आपके साथ ये सफर भी सुरीला ही होने वाला है। बिल्कुल सुरीला होगा अगर आप इस सफर में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे। तो अब दो सवाल आपके लिए है ना। पहला यही कि फिल्म आजाद का जो नृत्य गीत अभी आपने सुना वो किस पर फिल्माया गया था, नृत्य जोड़ी कौन

थी। और फिल्म किस्मत का जो गीत अभी आपने सुना, ये हिंदुस्तान हमारा है ये गीत, उसमें चोटी शब्द से ये गीत आ गया था। इसमें गाने वाले कलाकार कौन थे? और बढ़ते हैं अब आगे। वही गीत हमने चुना है जो फिल्मी पर्दे पर कोई नायक या नायिका नहीं गा रही बल्कि अन्य कलाकार गा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन की धुन।

0: जुआ दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजजुआ दो कन्या,
0: हाँ उड़ उड़ बैठी बजजुआ दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

0: गुड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया दो
0: कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया।

जी तो हमारे श्रोताओं ने सही जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आपने लिखा है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो है दो अभिनेत्रियों डांसर पर अभिनेत्रियां जो डांसर अभिनेत्रियां थी उन पर फिल्माया गया, यानी जो डांसर्स थी नृत्य जोड़ी थी उन पर फिल्माया गया था, वो थी सई और सुब्बुलक्ष्मी। बिल्कुल सही कहा है आपने, आपका जवाब और कई सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि नृत्य जोड़ी थी सई और सुब्बुलक्ष्मी की।

और हमारा दूसरा सवाल था कि फिल्म किस्मत में जो गीत आपने सुना, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इस गीत में गाने वाले कलाकार कौन थे? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने कि आवाजें प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी की थी जिन्होंने इस गीत को गाया था, और साथ में साथी भी थे जिन्होंने इस आवाज को मिलजुल कर आवाज दी थी, यानी प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी ने इस गीत को गाया था, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि सही जवाब आपने हमें दे दिया है। हमारी एक श्रोता लिख रही है कि सफर का टिकट तो ले लिया है कि आपके साथ चलने, बिल्कुल चलने, जब सफर का टिकट आपने ले लिया है तो देर किस बात की, हमारे साथ इस सुरीले सफर में शामिल हो जाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए तैयार सभी मित्रों को दोपहर का नमस्कार, और इस सुरीले सफर की पायलट मंदाकिनी जोशी जी को भी नमस्कार। आपके साथ एक घंटे के सुरीले सफर के लिए हम सभी संगीत प्रेमी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, और हम भी तैयार है आपको इस सुरीले सफर में जगह जगह जाकर अलग अलग चीजों की सैर करवाने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे। अच्छा, आपने पूरी एक कविता लिख डाली है, आप वही कवि श्रोता हैं हमारे। एक बेनाम जिंदगी जीता हुआ वो आदमी भीड़ में रहकर भी भीड़ से दूर था, चेहरे पर खामोशी की धूल जमी थी और दिल जाने कितने दुखों से चूर था। न कोई अपना उसे आवाज देता, न किसी चौखट पर उसका इंतजार था, वो चलता रहा उस उम्र भर में यूं ही तन्हा, जैसे रेगिस्तान में भड़का कोई गुब्बार था। पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे, रातों की चुप्पी में उसके आंसू तकिए से लिपट कर सोया करते थे। फिर एक दिन किसी आत्मीय पुकार ने उसके सूने मन को छू लिया, जैसे बरसों से सूखी धरती पर पहली बारिश ने प्यार लिख दिया। एक आवाज थी जिसमें अपनापन था, एक नजर थी जिसमें श्रद्धा का उजाला था, उसने पहली बार महसूस किया वो भी किसी के लिए अनमोल निराला था। क्या बात है, वो मुसाफिर फिर मुड़ पड़ा जीवन की ओर, पुरानी गलियों को पीछे छोड़ आया, टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को जोड़कर अपने भीतर नया सूरज उगाया। दर्द अब भी था उसके सीने में, मगर आंखों में उम्मीद का दीप जलने लगा। जो आदमी खुद को खो चुका था, कहीं वो फिर से खुद से मिलने लगा। क्या बात है, और देखो जिसे दुनिया ने बेनाम कहकर ठुकराया, वही एक दिन सफलता की चोटी पर मुस्कुराया, क्योंकि प्रेम और विश्वास का एक छोटा सा बीज है, पत्थर दिल में भी जीवन उगा जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आप रचते हैं, आपको मैं सैकड़ों साधुवाद देती हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इस सप्ताह में तीसरी बार दर्शन देने के लिए, सुरीली आवाज के लिए, मधुर वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये हमारी ड्यूटी है ना, आप इसे लिख लेते हैं कि क्या हुआ कब आने वाले, लेकिन हमारी ड्यूटी है, जब जब ड्यूटी लगेगी तब तब हमें तो आना ही पड़ेगा। अब ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी अपनी, फिर हमारे श्रोता शिकायत करेंगे कि मंदाकिनी जी तो अपनी तारीफ में लगी रहती है। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत प्यार बरसाया है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। चलिए तो इस सुरीले सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हमने उन गीतों को चुना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर किसी नायक या नायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके साइड आर्टिस्ट जो हैं या अन्य कलाकार जो हैं उन्होंने इन गीतों को गाया है, या बैकग्राउंड गीत के रूप में ये गीत कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आई हूँ, सलिल चौधरी का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है दो बीघा जमीन।

हमारे और भी श्रोताओं ने सही जवाब हमें दे दिया है। आप लिखते हैं कि सही और सुबह लक्ष्मी दो नर्तकियां हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर नृत्य किया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो आपने गीत सुनवाया था हिंदुस्तान हमारा है, उसे आवाज दी थी अमीरबाई कर्नाटकी और खान मस्तान ने। जी, इसमें प्रदीप कुमार की आवाज है। प्रदीप जो हमारे गीतकार प्रदीप हैं, कवि प्रदीप हैं, उनकी आवाज है और उनका साथ अमीरबाई कर्नाटकी दे रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गुमनामी के अंधेरे में खुद को समेटे हुए व्यक्ति भले ही दुनिया की नजरों से उजल हो, लेकिन जब कोई निस्वार्थ प्रेम और अपनेपन से उसे पुकारता है तो उसके भीतर की सोई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वह आत्मीयता उसके मन में जीवन के प्रति एक नया आकर्षण पैदा कर देती है। और आप लिखते हैं कि वही पथिक जो कल तक ठहर चुका था, अब अतीत की संगीन गलियों और निराशा को पीछे छोड़कर अटूट आत्मविश्वास के साथ नई राहों पर निकल पड़ता है। यही संकल्प और श्रद्धा उसे साधारण से असाधारण बनाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जो शब्द है वो अत्यंत गहरे, सकारात्मक और भावनात्मक है, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों ही शब्दों में आदर और निष्ठा की भावना छुपी होती है। श्रद्धा मन का वो भाव है जिसमें मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को किसी उच्चतर सत्ता, ईश्वर, गुरु या आदर्श को समर्पित कर देता है और उसमें ही अपनी भलाई समझता है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक तरीके से आपने अपनी बात हमें रखी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर के साथ चलने से कि गीत नजर आएंगे इबादत को पढ़ने से। बिल्कुल, इबादत पढ़ी और देखिए आज तो बहुत सारे श्रोता हमारी पसंद के करीब आ गए हैं। धीरे धीरे ऐसे ही होगा कि हम आपको एक इबारत देंगे और आप समझ जाएंगे कि भैया अब कौन सी गीत आज उद्घोषक लेकर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान जी को हार्दिक धन्यवाद वो देना चाहते हैं। एक श्रोता ने जानना चाहा कि मैं बेनाम हो गया, ये आवाज क्या नरेंद्र चंचल की मधुर आवाज थी और वही पर्दे पर भी गा रहे थे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, वो मखमली आवाज नरेंद्र चंचल साहब की ही है और पर्दे पर भी वही इस गीत को गा रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज इस सुरीला सफर के अंक में हमने एक प्रयोग किया कि उन गीतों को चुना जाए जिन्हें किसी फिल्मी नायक या नायिका ने न गाया हो पर्दे पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो हैं, अन्य कलाकार जो हैं, या बैकग्राउंड गीत के रूप में उस गीत को फिल्माया गया हो या किसी डांसर ने उस पर नृत्य किया हो, ऐसे कुछ गीतों को चुना जाए। तो आज हमने उन्हीं गीतों को चुना था और आप हर एक गीत को सुनने के बाद समझ रहे होंगे कि पर्दे पर इस गीत को कैसे फिल्माया गया है। एक और गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं, दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम इस गीत में से शब्द आया है चिड़िया।

आया बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया।

का हाथी मुन्ने का हाथी मुन्ने का हाथी सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा मोर भी आया कौवा भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया

जी, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत काफी हद तक मेरे पर ही फिट बैठती है। अच्छा, आप पर फिट बैठती है कैसे? कि महंगी कॉन्वेंट स्कूल की मेरी पढ़ाई, पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ, आगे मेरी हायर एजुकेशन बहुत खर्चीला। मैं कंफ्यूजन में था कि ये सब कैसे होगा। फिर मेरी इंटरनल आत्मी पुकार सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन और साइड बिजनेस करके अपनी हायर एजुकेशन का खर्चा निकालूंगा। ऐसा ही हुआ। उदासी की गलियां को छोड़कर जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ माता रानी के आशीर्वाद से सफलता हासिल करी और आज बच्चे भी अच्छी पोस्ट पर है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा, हमारे सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है कि साई और सुबू लक्ष्मी वो नर्तकियां थी और गायिका थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। आपने एक ने सही जवाब दिया कि किस्मत के गायक प्रदीप, कवि प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी हैं। बिल्कुल सही बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 20 मिनट शेष रह गए हैं, अभी भी ओल्ड सॉन्ग्स चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अरे तो ओल्ड सॉन्ग ही तो चलने वाले हैं अंत तक। आप इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आदमी बेनाम होकर मुख्य धारा से दूर होकर तब जीने लगता है जब वो सभी ओर से हताश हो जाता है। जीवन उसे निरर्थक लगने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। हताशा के उस समय उसके किसी अपने की पुकार से उसके आत्मविश्वास में नई जान आती है और अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ वो अपनी आगे की मंजिल तय कर लेता है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दुख से भरी हो या सुख से ही भरी हो। जीवन नैया डगमग डगमग चलती है, कई हिचकोले आते हैं, उसी में फूलों भरी जिंदगी आती है, कांटों भरी शाम भी। व्यक्ति इन्हीं उतार चढ़ाव में अपने को एडजस्ट करते हुए चलता है। अगर जीवन के सफर में सिर्फ फूल ही फूल हो या कांटे ही कांटे हो तो एक रास्ता हो जाएगी, सुख दुख के अनुभव से वंचित रह जाएगा। खट्टा मीठा कड़वा कसेला सभी प्रकार के अनुभव जीवन में आते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो इस सुरीला सफर हमने रखा है जहां पर ये सारे स्वाद हमें महसूस करने हैं, है ना। और अंत तक हमें अपना साथ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं फिल्म सफर के साथ। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, इंदिवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन। याद कीजिए इस गीत को फिल्माते समय आपको किन का चेहरा याद आता है। हाँ, किसी नायक या नायिका ने तो इस गीत को पर्दे पर नहीं गाया है, है ना।

आई चिड़िया जो गाना आपने दिल्ली दूर नहीं का सुनवाया था, उसके मुखड़े में इबारत में कोई शब्द है ही नहीं, क्यों नहीं है? चिड़िया शब्द हमने आपको बताया था ना कि चिड़िया शब्द वहीं से उस गीत को लिया गया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत एकमात्र ऐसा माध्यम है जो दुखों के लिए भी काम कर सकता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, मैं एक मुसाफिर बेशक पुरानी गली छोड़कर बेनाम जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा के बल पर एक दिन सफलता जरूर हासिल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म 2 बीघा जमीन का ये गाना मेरे पिताजी आखिरी दिनों में हमेशा सुनते थे, उनकी मृत्यु मई महीने में हुई थी। बिल्कुल, ये गीत है ही ऐसा जहां इंसान पुराने जो लोग हैं वो इसे सुनना पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी भी तो यहां मुसाफिर ही हैं, हमें अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं, जाने कब किस मोड़ पे मंजिल मिल जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सभी मित्रों को आज मैं नमस्कार कहता हूं, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और विविध भारती जिसे सुनकर हम कहेंगे, हे विविध भारती, जिस गली में जिस घर में रेडियो बजना रहा हो उस गली से गुजरना नहीं, क्योंकि विविध भारती हमारी खास पसंद है। और अब हम इस सफर के आखिरी सोपान पर हैं, जहां पर हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम अपनापन। फटाफट जवाब भेजिएगा, ये बताइएगा कि आदमी मुसाफिर है जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इसमें शब्द आता है मुसाफिर और आदमी, ये मुख्य रूप से किस अभिनेता और बाल कलाकार पर फिल्माया गया था, और पर्दे पर इस दौरान आपको कौन सी अभिनेता और अभिनेत्री बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं? जी हाँ, ये गीत जो पर्दे पर गा रहे हैं वो अभिनेता कौन है और बाल कलाकार कौन है उनके साथ, और इसी गाने में मुख्य दृश्य के दौरान कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में सवार दिखाई देते हैं? फटाफट लिखिएगा, बहुत कम समय बचा है।

एक श्रोता ने लिखा है कि कितना बढ़िया गाना है चुन चुन करती आई चिड़िया। इस चिड़िया के ऊपर कई कहानियां बनी हुई हैं जिसको बच्चे बड़े ध्यान से प्रेम से सुनते हैं।

तो इस सवाल का जवाब आपने दिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आदमी मुसाफिर है गाना मुख्य रूप से अभिनेता सुधीर दलवी, जिन्होंने एक भिखारी की भूमिका निभाई थी, और बाल कलाकार निवेदिता जोशी थी जो बाद में निवेदिता सर्राफ के नाम से जानी गई, उन पर फिल्माया गया था। और इस गाने के मुख्य दृश्य के दौरान कौन थे, अभिनेता जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित भी बस में सफर करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? कुछ याद आया आपको?

तो सुरीला सफर में आज इतना ही। आज का ये सफर आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ यूँ सफर करना और सुख दुख उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी में इस तरह से गोते लगाना। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तो बस आज का ये सफर यहीं तक। इस कार्यक्रम से, इस सफर से आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
4: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने, उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी, टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है ताजमहल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड का गीत। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सचिन देव बर्मन की है।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी।

0: परिंदे में जानवर के और दिग्विजय जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने के

किशोर कुमार की आवाज थी। फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस तो आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा

पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्यों? क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।

0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को, फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार शंकर जयकिशन थे। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब खत्म होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। ये पहला गीत सुनना चाहा है, ये है हमारे सुनने वाले श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त। और ये हैं विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अड़िया, इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सकें। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुँचा सकें। चलिए, आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है दाग।
1: मेरे दिल में आज

0: हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ओ मेरी महबूबा।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: पोस्टमैन, चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंदस्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
2: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा, तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
4: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
3: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
4: नंबर 11 पश्चिमी गली।
3: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
4: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
3: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
4: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा, आगे पढ़ो।
3: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
4: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियादे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
3: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: क्यों कंद स्वामी, आज मेल लेट थी क्या?
1: हाँ, आज जरा लेट ही आई है पोस्टमास्टर साहब। अब तक तो सारी की सारी डाक गांव में बट जाने चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्टमास्टर हैं।
0: इस गांव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्टमास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के

0: लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है?
1: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गूढ़ बात करना खूब जानते हो।
0: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना। मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए। मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई। यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या? तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
1: मनी ऑर्डर? हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है। शाबाश जवान।
0: कौन है वो सैनिक?
1: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
0: मेरा डुप्लीकेट?
1: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंदस्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंदस्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछें और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती। वो हूबहू तुम जैसा है।
0: कौन है वो?
1: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
0: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है। उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
1: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था। जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना। काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया। सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है वो। 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
0: अच्छा तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
1: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
0: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है। डाक खाने का नियम तो यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
1: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
0: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है तो मैं चलूं। और हाँ उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
1: ये लो ठीक तरह से गिन लो। डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई शिंगारम, क्या हालचाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज, क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा, मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो, हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है साले, लगाओ।
0: अरे रे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई शिंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला, जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई अपने राम का भी तो यही धंधा है, मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल ही कह रहे, अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवाल नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: शिंगारम, शिंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त,
1: क्यों
0: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों कुछ झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ,
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है,
2: अजी पोस्टमैन साहब जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है? कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी, अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तू लाइए दे दीजिए ना, मेरा नाम श्रृंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
3: वाह ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
3: शिवकामी अम्माल के नाम, उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो, लेकिन शायद तुम शिंगारम को नहीं जानते। जिस शिव कामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
3: वरना क्या होगा?
4: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नामो निशान मिटा दें, इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
1: हाँ हाँ लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
3: सिंगारम ये ना भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं, तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं, तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा, अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
4: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
1: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहां, देखना ये शिंगारम

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए, और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए, 100-100 रुपए के 30 नोट हैं, अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ तो पढ़ो।
0: लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
1: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूंगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहां कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती।
0: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
1: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा, ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
0: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
1: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
0: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
1: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ, आओगे ना बेटा?
0: आऊंगा माँ जी।

0: अरे जरा देखकर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना?
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारा? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी ना पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम।
0: अरे अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जीजी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस गांव में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी

0: ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा। कौन जाने।
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है। तुम्हारी ये उल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं।
1: कितने भी भेजे हो तुझे क्या मतलब।
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, चला जाए यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं

0: सामने वो बदमाश शिंकारम खड़ा है। अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है। अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं भाग थोड़े ही हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है?
3: देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है। तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है। रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा?
3: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना, तुम मुझसे ही शादी करोगी।
0: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकूंगी।
2: अच्छा ये बात है?
0: छोड़ दे, छोड़ दे।
4: कहा कोई नहीं बताएगा तुझे? दिन भर एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
2: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
4: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊं तो।

0: हम ढेर का रख दूंगा, क्या समझ रखा है तुमने?
1: अगर मैं अपने दल बल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
2: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
3: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
2: जी, इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
3: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
2: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
3: हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
2: लेकिन मामा ढंग का तो हो, मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
3: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है?
2: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं, और वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
3: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
2: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
3: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
2: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
3: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने? चली गई, कितनी सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है? जब उसका मंगेतर है तब पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है। लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़के के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
4: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
5: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
4: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
5: ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
4: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
5: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
4: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
5: मैं लाता हूँ। दवाई?
4: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
5: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
4: बेटा, तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
5: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्मों तक पुण्य कर्म करने चाहिए, आज मैं कितना

की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के ज़माने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊंगी
1: जी।
2: हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ।
2: और उससे ज़्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुँच जाऊँगी और गाने भी पेश कर पाऊँगी।
1: क्या बात है,
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: प्रमिला जी, सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी
2: जी,
1: तो हम तब से बात शुरू करें
2: जी
1: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला।
2: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
1: जी,
2: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
1: हाँ।
2: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था, वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें फिर नाम क्या रखे।
1: हाँ।
2: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके
1: जी, जी, जी।
2: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए।
1: हाँ।
2: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
1: वाह वाह
2: जी।
1: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी यादें?
2: पहला शो 1975 14 अप्रैल
1: जी,
2: जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन।
1: हाँ, हाँ,
2: तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
1: क्या बात है
2: जी,
1: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है,
2: मुहूर्त माना जाता है, हमारे 3.5 मुहूर्त बोलते हैं अच्छे जिस दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी पाड़वा।

0: बात है
1: जी।
0: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी
1: हैं। हाँ, फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ। जैसे मैं कहना अन्ना जी से के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था।
0: हाँ हाँ,
1: तो मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि मन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कुणा से वो जो गाना है, मुझे देखते ही पप्पा संगा, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा कुणा। मुझे याद है छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी
0: जी।
1: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की। तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कुणा से ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई। अच्छा, मुझे बोली अच्छा। तू मेरे लिए गाओगी? तो बोले हाँ जरूर गाओगी।
0: क्या बात।
1: बहुत मजा आया उससे, बच्चों से लेकर।
0: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का हुआ
1: जी,
0: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको याद है?
1: इतना सा तो नहीं, लेकिन एक दो मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए, अजीब दास्तां है ये, इस तरह के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
0: बिल्कुल। तो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी, मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी। आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है, जरा मुश्किल है।
1: राइट।
0: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगी?
1: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है मुझे, हाँ? वो बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो।
0: क्या बात,
1: आई लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा।
0: अलग अलग गायिकाओं ने अलग अलग मौके पे
1: ऐसे मैं
0: है।
1: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी, अलग अलग गायिकाओं के गाने हुए
0: जी,
1: उसकी
0: जी,
1: झलक उसमें मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम जी।
0: तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं।
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई।
0: अच्छा, मुंबई। अच्छा, मुंबई में?
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव
1: में हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई
1: सब चाल थे सब ऐसे।
0: जी, जी, जी।
1: और वैसे चाल थे लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जैसे पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर
1: सब मिलकर काम करते थे। बहुत मजा आता था लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। और सब सब गणपति दिवाली सब त्यौहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि लगता था हम सबका एक ही त्यौहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके।
0: अच्छा।
1: लेकिन घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को।
0: जी जी।
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था।
0: हाँ।
1: तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे
0: जी जी।
1: गाने तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरु के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
0: अच्छा।
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ।
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे और गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे अगर दादर में क्लास होता तो।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी तो उसकी वजह से वो हो गया। पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई क्योंकि वहाँ म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था।
0: जी जी।
1: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था दिल्ली में। तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके संगीत शारदा।
0: जी जी।
1: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई।
0: अच्छा।
1: मेरी आवाज जरा भारी थी, जाड़ी थी।
0: हा।
1: तो पुरुष के गायक के लायक थी।
0: अच्छा।
1: और हाइट भी अच्छी थी।
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है, नारद का रोल किया है स्कूल में। तो स्कूल
0: के ये महिला विश्वविद्यालय,
1: महिला नहीं वो स्कूल की बात कर रही हूँ, महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था।
0: अच्छा।
1: तो वो हमने उधर किया यूथ फेस्टिवल में। तो पहले बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली दिल्ली गई यूथ फेस्टिवल के।
0: अच्छा,
1: बाकी फ्रेंड्स वगैरह थे साथ। बहुत मजा आया दिल्ली में, और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं ऐसा हुआ था।
0: क्या बात है,
1: बहुत मजा आया।
0: उस संगीत शारदा से कोई नाट्य पद जिसकी एक लाइन आप सुना सके?
1: जरूर जरूर।

0: वाह वाह क्या बात है। बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
1: नहीं करती।
0: पुरुष पर, तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
1: राइट, राइट।
0: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
1: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
0: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका इस नाटक में निभाई थी। जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
1: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटे सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियाँ खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना। और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया, शायद फिल्म डिवीजन भी चालू है, कहीं पता नहीं। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए।
0: हाँ।
1: फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ, और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गए।
0: अच्छा।
1: 42 साल का मेरा जन्म है।
0: हाँ।
1: और 58 को शादी हो गई, 16 साल की।
0: हाँ।
1: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई, तो पहली बेटी हो गई तो 1962 में
0: जी
1: उसका बेटी का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने
0: जी,
1: कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है तुम कर रही हो, तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटर म्यूजिक था एसएनडीटी में।
0: हाँ।
1: तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई।
0: वो
1: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी।
0: हाँ।
1: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक होती है।
0: हाँ।
1: कि जाओ कि नहीं, तो उस तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी।
0: अच्छा।
1: बच्चों को।
0: हाँ।
1: तो 62 में मैंने एमए किया फिर।
0: वाह।
1: और फिर एमए किया, और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
0: अच्छा।
1: हाँ, तलत साहब के साथ एक नंदी दुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस कप मेंबर थे। तो वहाँ पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस कप का, तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या, हमने चलेगी
0: दौड़ते
1: जाऊंगी कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला, 3 महीने का वो टूर था हमारा।
0: क्या बात।
1: और 2 बेटियां, एक 4 साल की, एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की।
0: हाँ।
1: मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से।
0: हाँ।
1: और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लीजेंड्स है,
0: जी जी,
1: उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा वहाँ जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके। अच्छा। गाने ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे, बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला।
0: तलत साहब को आपने याद किया, तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं।
1: मराठी में गाने थे।
0: जी जी।

0: लिए।
1: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
2: घूमी
1: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
2: नहीं, सबसे
1: पहले वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
2: ज्यादा तो जी
1: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ,
2: वेस्ट इंडीज तलत साहब के साथ गए। फिर उसी को नंदी दुगल जी थे
1: जी
2: प्रमोटर अगली बार, तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
1: जी, जी।
2: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया हमने, टूर किया।
1: अच्छा,
2: ईस्ट अफ्रीका का।
1: हाँ।
2: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के लिए, तो उन्होंने पहले ही शर्त डाल के मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
1: हाँ।
2: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं।
1: हाँ।
2: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए। तो मैं अपने गाने गा के, मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी।
1: जी, जी।
2: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की रेंज और आशा भाई की रेंज, तो दोनों में मैं संभाल थी कैसे भी करके।
1: अच्छा।
2: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था।
1: अच्छा।
2: दम मारो दम। तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी
1: जी, जी।
2: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे।
1: अच्छा।
2: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस किया उनको
1: जी, जी।
2: इतने बड़े, बहुत बहुत ही बड़े सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहाँ शेर कैसा है, इधर उधर इधर ऐसा घूमता है, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
1: जी, जी।
2: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा, और एक बार स्टेज पे गए छूट गए फिर। मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे का कि आपने तीन चार
1: सुने, तो कौन सा होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: प्रस्तुत किया? लोगों ने बहुत नाम भी रखे, क्योंकि ये क्या है,
0: मतलब टीका टिप्पणी की, आप जो
1: टीका टिप्पणी की,
0: जी, जी, जी,
1: वो मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई। उसकी वजह यह है कि लोगों की टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी,
0: अच्छा,
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी, जी।
1: तो ये जिनको मालूम नहीं कि इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां है, तो लोग क्या, हाँ वो दूसरे के गाए हुए जो पॉपुलर गीत है वही गाती है,
0: अच्छा,
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी, लता जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी।
1: लोगों ने कहा कि अब तू खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के, इतने साल हुए कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, अच्छा। कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या प्रोग्राम किए, तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा एक्सपीरियंस,
0: अच्छा।
1: जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे,
0: हा, हा, हा।
1: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला, वो दिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में,
0: अच्छा।
1: मेरी सब सहेलियां, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ मैं गाने गा के भेजती हूँ रोज सुबह, मेरा ये काम होता है।
0: क्या बात है,
1: कुछ लिखा हुआ, कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
0: सोशल मीडिया,
1: तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
0: हूँ। क्या बात है,
1: हाँ। तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो,
0: हाँ।
1: वो तुम तुम्हारा करके गाती हो,
0: हाँ।
1: वो प्रमिला दादा का गाना लगता है,
0: अच्छा,
1: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में, उन, मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी, पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी पहले
0: जी,
1: गाने
0: जी,
1: अभी नहीं आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक तक जाती, तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है क्लासिकल म्यूजिक का,
0: हाँ।
1: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा, करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके हारमोनियम पे से
0: क्या बात है
1: भेजे,
0: अच्छा,
1: कभी कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके साथ गाए, लेकिन बहुतर गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है, मुझे भी अच्छा लगता है।
0: तो इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो ऐसा भी होगा?
1: नए में मुझे नहीं याद आता है, अच्छा, अलका याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका, हाँ, याग्निक का,
0: अच्छा,
1: मोह मोह के धागे,
0: मोह मोह के धागे दम लगा के हैशा, इस फिल्म
1: दम लगा के हैशा उसका,
0: ये लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है,
1: हाँ, मोह मोह के है,
0: तो और इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना है, ये आपका हमेशा से रवैया रहा है
1: क्या? नकल नहीं, किसी
0: नकल किसी की नहीं, यानी मिमिक्री नहीं,
1: मिमिक्री नहीं।
0: अच्छा,
1: अपनी गीता दत्त के गाने बहुत मुझे पसंद।
0: लेकिन आशा जी का गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज में भी गाना है?
1: तो अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है, मतलब शब्दोच्चार या कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी तरह से, तो वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप
1: नॉट नकल करने के हिसाब से नहीं आता था।
0: जी जी,
1: क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट्य, क्यों की लता जी के रेंज में ही मैं
0: गाऊं,
1: ऊपर जाके फिर वो आवाज डबल हो जाएगी। उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में
1: गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव,
1: क्योंकि आजकल वो जो कैरियों के जो प्रकार आया है ना,
0: जी जी,
1: आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सीखो, अच्छी तरह से तालीम पाओ, और इतना आसान नहीं है। नहीं तो एक ही लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी, बहुत सारे निकलते थे गली चौड़े में।
0: क्या बात है, तालीम बहुत जरूरी है, क्लासिकल बहुत ही सीखना
1: बहुत
0: कितना जरूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3-4-5 साल तो, फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक, लेकिन आवाज की तैयारी, जो हरकतें मुरकतें, फिर अपने गले से नहीं, तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज नॉट, मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है कुछ जो वैरायटीज वो करती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे उसमें मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो ओरिजिनल है पहले वो तो गाओ।
1: नकल नहीं आती उसमें, लेकिन उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है, और वो हिसाब से बहुत जरूरी है। आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं अभी।
0: बिल्कुल सही।
1: तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में,
0: जी जी,
1: वो क्यों करते थे इतना?
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही गाते थे ना।
0: सही बात, बिल्कुल सही। मन्नदा की बात करते हैं, आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड किया, संगीतकार थे श्री रामचंद्र। तो मन्नदा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किया?
1: एक शो किया बड़ौदा में।
0: अच्छा,
1: बड़ौदा में मन्नदा ने मुझे एक, मतलब एक उनको मैंने पूछा था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे, तो मेरी आवाज में वो जो मॉड्यूलेशन होता है जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही जरूरी है,
0: जी जी,
1: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है, तो फ्लैट लगेगा और भाव नहीं आएंगे उसमें, तो मेरी आवाज में नहीं था, किसी के आवाज में जाता होता है किसी के आवाज में, तो मैंने मन्नदा को पूछा कि मन्नदा ये कैसा लाने का अपने आवाज में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें ऐसे आघात करते जाओ। अच्छा। और मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब रियाज करके।
0: क्या बात,
1: बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला कि ज्यादा नहीं करना, लेकिन कंप होगा तेरे आवाज में। बहुत ही अच्छा। उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
0: जी जी,
1: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में, बाम्बू चा वना च झ झ बहुत से, बाम्बू चा वना झऱ्या चा काठी येशील सजणे सजणे माझ्याच पाठी।
0: बिल्कुल, उनके लिए टंग ट्विस्टिंग
1: बहुत बहुत, तीन बार हुआ ठीक, चार बार हुआ इतने, या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा। अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ, तो उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं उनको बराबर करके लाइन में।
0: क्यों ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दे हमें,
1: हाउस ऑफ बैम्बू।
0: जी जी,
1: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर, नंबर 54 जिसे मॉड्यूलेशन फोर की उसके कम करना, उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है।
0: जी जी जी,
1: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर, हो बांबू चे घर बांबू चे दार, बांबू ची जमीन पिवळी शार, बांबू चे घर बांबू चे दार, बांबू ची जमीन पिवळी शार, बांबू चा घरात आहा आहा, स्वप्नाचा झुला ला ला ला ला, झुलवित राय

0: Number 54 at the house of the bamboo door. Number 54 the house of the bamboo door.
1: क्या बात है, बहुत सुंदर.
0: उनका तो क्या,
1: वाह वाह. मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं.
0: जी जी जी.
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है.
0: हाँ.
1: मगर प्योर क्लासिकल गाने प्योर जिनको कहा जाए, जो लाइट कम और क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने.
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे, क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं.
1: बहुत से.
0: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में, वो उसमें बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है. मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन.
1: वाह,
0: बहुत अच्छा. थोड़ा सुना था

0: सिर्फ गाना नहीं, नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा है, पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के है उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमा दे? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना, उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और क्या करूँ, और किसमें हाथ क्यों डालूँ?
1: विनम्रता की हद है,
0: हद है, हद है। और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो मैंने वो कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है
1: जी जी,
0: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है। अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है
1: जी, क्या बात, वाह वाह,
0: बहुत अच्छा लगा।
1: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं
0: जी,
1: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
0: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो मिल गए हो,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो
1: जी जी,
0: हाँ
1: हंसते जख्म जी जी,
0: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
1: हंसते जख्म फिल्म का जी, बिल्कुल वही सुनते हैं।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग

0: पर है डूपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: ये है विविध भारती।
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहां से पहली।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके और रास्ते पर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
8: सुनिए,
7: कहिए,
9: सुनिए एक खुशखबरी।
7: कहिए ना।
9: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
7: शुक्रिया, शुक्रिया।
9: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

से कुछ देर बाद यानी 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने, और युवा दोस्त अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी शाम 5:30 से।

डॉक्टर सुरेश कुमार से सुनिएगा आज का गीता संदेश, जिसमें आज आप सुनेंगे अध्याय 2 से श्लोक 58 से 63 तक की व्याख्या, शाम 6:20 पर। किसान भाई अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी सुन सकते हैं शाम 6:30 पर, और ग्रामीण आंचल और ग्रामीण संस्कृति लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम ग्राम संसार होगा शाम 7:00 से।

फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय जवान शाम 7:30 पर और श्रोता दोस्तों कुछ गैर फिल्मी रचनाओं का आनंद आप ले सकते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में 7:45 पर।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें होगा रात्रि ठीक 10 बजे से।

अब दोस्तों विविध भारती के कार्यक्रमों का आप आनंद ले सकते हैं। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम आपके लिए और दूसरा फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत होगा रात्रि 9:30 से। और समाचारों के समय इस प्रकार से रहेंगे, हिंदी में समाचार शाम ठीक 6 बजे, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 11 बजे, अंग्रेजी में समाचार शाम 6:05 पर, रात्रि ठीक 9 बजे और रात्रि 11:05 पर। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से हम रिले करेंगे शाम 6:10 पर। तो ये थी आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 होते हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम, गाने नए पुराने।

शुभ दोस्तों, कार्यक्रम गाने नए पुराने सुनने वाले सभी दोस्तों का स्वागत करता है। और कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति किशोर कुमार की आवाज में महबूबा फिल्म के इस गीत के साथ।

जख्म का पहला गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम था महबूबा। श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जानी दुश्मन से।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म थी काला पत्थर। श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम गाने नए पुराने आप सुन रहे हैं अपने दोस्त नवीन के साथ, और कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ये गीत जिसे हमने लिया है मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है अदालत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप गीत सुन रहे थे। फिल्म थी अदालत। और लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म जुदाई से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5:30 होते हैं। अब युवा दोस्त सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाली सभी युवा शक्ति को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम विशेष रूप से युवा दोस्तों के लिए हम प्रसारित करते हैं और युवा दोस्तों को मनोरंजन की दुनिया में ले चलते हैं और उसके साथ साथ कुछ युवाओं से संबंधित और युवाओं के लिए उपयोगी जानकारी भी दी जाती है और साथ में बात की जाती है। वर्तमान युग में जो युवाओं की भूमिका है उसके बारे में, तो दोस्तों कार्यक्रम में ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन युवाओं को पहले कार्यक्रम के शुरुआत में लिए चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं कुछ सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत अमर अकबर एंथोनी फिल्म से

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: श्रोतो दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में एक जरूरी विषय पर चर्चा आपके साथ होगी। नौजवानों, क्योंकि जो युवा शक्ति होती है आप सभी जानते हैं एक राष्ट्र की संपत्ति होती है, वो राष्ट्र की धरोहर होती है, राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी भी मानी जाती है। अगर युवा स्वस्थ है तो देश स्वस्थ माना जाता है, देश मजबूत माना जाता है और देश किसी भी चुनौती या संकट का सामना आसानी से कर सकता है। तो जहां तक बात युवाओं की और हमारे अन्य सभी श्रोता साथियों की है तो दोस्तों अब मौसम की बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि चारों तरफ जो अब पर्यावरण हमें नजर आ रहा है उसमें हालांकि ये महीना मई का महीना है जो कि पूरे उत्तर भारत में अच्छी खासी गर्मी का एक महीना या मौसम होता है और अब की बार से पिछले लगभग महीने भर से मौसम में बदलाव और उतराव चढ़ाव देखने को मिले हैं। कुछ कुछ दिनों के लिए कई तरह के मौसम के रूप रंग हमारे सामने आए हैं लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि मौसम अब एक तरफा यानी कि जो असली मौसम है यानी कि गर्मी का जो मौसम है वो अब हमारे सामने आ रहा है। तो गर्मी के इस मौसम में हमें थोड़ा अपना ख्याल भी रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है, अपने घर वालों का अपने निजी जनों का पूरा ख्याल रखना है दोस्तों, क्योंकि गर्मी से बचना भी बहुत जरूरी है और गर्मी में आवश्यक कार्य हो तो घर से बाहर निकलें और सिर को और अपने पूरे शरीर को अगर हो सके तो संभव हो सके तो ढककर ही निकलें। और गर्मी घर से बाहर निकलने से पहले अगर आपको पैदल चलना है, पदयात्रा करनी है तो थोड़ा एक दो गिलास पानी का जरूर पीकर चलें और उसके साथ साथ सिर पर अगर कोई कपड़ा या आप कुछ कैप टोपी परना कुछ भी ऐसा रख सकते हैं तो अपने शरीर को सिर को जरूर ढकें, क्योंकि सीधी धूप अगर सिर में जाती है तो एक स्ट्रोक होता है जिससे हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त बुजुर्गों का और बच्चों का जिनके शरीर में कुछ कमजोरी रहती है, उनके शरीर इतने मजबूत नहीं होते, तो ऐसे जो भी होते हैं लोग उन सभी का विशेष ख्याल रखें, बच्चों का और बुजुर्गों का खास तौर पर। तेज गर्मी में तेज धूप में बाहर ना निकलें, अगर निकलें तो सिर ढककर निकलें, कोई छाता या कुछ ऐसी चीज रखकर चलें ताकि सीधी धूप आपके शरीर को ना लगे और लूओं से भी बचाव करने की जरूरत रहती है जिसमें आप ठंडा पेय पदार्थ पी सकते हैं, लस्सी हो सकती है, दही हो सकती है, ठंडा दूध भी हो सकता है, ठंडा शीतल जल भी हो सकता है दोस्तों। ये सारी बातें स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं और सलाद कच्चे जो होते हैं उनको आप ले सकते हैं जिसमें टमाटर है, नींबू है और प्याज है, इस तरह के जो सलाद हैं, खीरा है, ककड़ी है, ये सभी गर्मी के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको आप ज्यादा मात्रा में लें, ये अच्छे रहते हैं और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का भी निर्माण करते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर गर्मी फील होती है, शरीर को महसूस होती है कि स्वास्थ्य में अब दिक्कत महसूस हो रही है तो बिना देरी के अपने आप को डॉक्टर के पास लेकर जाएं, क्योंकि इलाज से परहेज अच्छा बताया जाता है। शुरुआत में ही चीजें काबू आ सकती हैं, ज्यादा बिगड़े नहीं और आप किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। और इस तरीके से इस मौसम में आपको ध्यान रखना है अपना भी और अपने जनों का भी। तो दोस्तों इस चर्चा को देते हैं यहीं विराम और आपको ले चलते हैं एक बार फिर से मनोरंजन की दुनिया में, लेकिन उससे पहले ये संदेश।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
2: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
1: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
2: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
1: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
2: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें
1: आकाशवाणी
2: विश्वास की आवाज।

युवा दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में लीजिए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म नसीब से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी एफएम बैंड पर, यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। हमारे अगले प्रश्न आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉ. APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRY ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। BJP leader Shubhendu Adhikari took oath as the Chief Minister of West Bengal today, heading the first BJP government in the state. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs, including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu, were sworn in as cabinet ministers. The newly elected MLAs of the West Bengal Legislative Assembly will take oath on the 13th of May. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister

0: बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान कल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पोलिंग पार्टियों को ईवीएम एवं अन्य सामग्री प्रदान की गई। हरियाणा निर्वाचन आयोग के सचिव गौरव कुमार ने कहा, सभी मतदाताओं को वोटर पर्ची वितरित की गई। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिठा ने जींद की अधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज लाइन बिछाने और गलियों के निर्माण का काम प्राथमिकता के आधार पर करने का आश्वासन दिया। और भिवानी सहित हरियाणा के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर कई मामले आपसी सहमति से निपटाए गए। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी व बंगाल की जनता को बधाई दी।
1: ऐतिहासिक दिन है, ये बंगाल की पवित्र भूमि, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, ये भूमि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि है। इसे उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जीत वर्ष 2047 के विकसित भारत के संकल्प की जीत है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने विकास, राष्ट्रहित और सुशासन के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। नए नेतृत्व के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ऐतिहासिक धरा पश्चिम बंगाल देश को नई दिशा देने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई सरकार प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर आज पोलिंग पार्टियों को ईवीएम वितरित की गई। पंचकुला में सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में महापौर व सदस्य के चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और अन्य सामग्री वितरित की गई। पंचकुला के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने बताया कि मतदान के लिए 20 वार्डों में कुल 204 बूथ स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर 2 ईवीएम मशीनें लगाई जाएंगी, जिनमें से एक महापौर के चुनाव के लिए और दूसरी नगर निगम सदस्य के चुनाव के लिए होगी। श्री शर्मा ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए वार्ड वार ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। आज जो भी कर्मचारी ड्यूटी से नदारद रहे हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ साथ एफआईआर भी की जाएगी। पंचकुला पुलिस की उपायुक्त सृष्टि गुप्ता ने बताया कि चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।
2: तो कल के इलेक्शन है, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई है। हमारी 85 लोकेशन और करीब 205 वोटिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन है, तो उसमें हमारी कुल मिला के 700 लोग हैं। और जो संवेदनशील या अति संवेदनशील बूथ हैं, उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज वेपन्स के साथ ड्यूटीज रहेंगी। और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी आसपास 200 मीटर की परिधि पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या कैंडिडेट का टेंट ना लगे, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई है।
0: उन्होंने उम्मीदवारों से आह्वान किया कि वे आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से पालन करें तथा चुनावों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने में प्रशासन का सहयोग करें। कल होने वाले नगर निगम चुनाव के दृष्टिगत आज अम्बाला के ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल में पोलिंग पार्टियों को चुनाव संबंधी सामग्री प्रदान की गई। रिटर्निंग अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त विराट ने बताया कि आज पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीनों के साथ साथ चुनाव संबंधी अन्य सभी सामग्री दी गई। पोलिंग पार्टियों व चुनाव से जुड़े अधिकारियों को तमाम चुनाव प्रक्रिया के बारे में एक बार फिर विस्तार से बताया गया, ताकि वे मतदान के कार्य को पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ संपन्न करवा सके। मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीनें इसी काउंटर पर आकर जमा करवानी होंगी। मतदान 8 बजे शुरू होगा और साय 6 बजे तक चलेगा। इससे पहले राज्य चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार प्रातः 7 बजे मॉक पोल भी होगी। फरीदाबाद जिले में कल होने वाले पंचायत उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन फरीदाबाद ने गांव शाहूपुरा खादर ब्लॉक तिगांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करती है। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या शांति भंग करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव गौरव कुमार ने कहा है, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका चुनावों में मतदाताओं की सुविधा तथा अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी मतदाताओं को वोटर पर्ची वितरित की गई है। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव में पहली बार यह व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि चिन्हित मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के सत्यापन एवं पहचान सुनिश्चित करने के लिए सभी उपायुक्तों को माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपना वोटर कार्ड अथवा राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा निर्धारित अन्य कोई वैध पहचान पत्र साथ लाना होगा। श्री गौरव कुमार ने बताया कि सभी उपायुक्तों को दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों एवं महिला मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर सहायता बूथ तथा पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मिठा ने जींद वासियों को आश्वासन दिया है कि जिन कॉलोनियों को सरकार द्वारा अधिकृत किया जा चुका है उनमें सीवरेज लाइन बिछाने और गलियों के निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। वे आज जींद में जनता दरबार लगाकर आमजन की समस्याएं सुनने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मीडिया से बातचीत में डॉ कृष्ण मिठा ने बताया कि जनता दरबार में सबसे अधिक शिकायतें सीवरेज और फैमिली आईडी से संबंधित आई हैं।
3: लोगों की जो समस्याएं थी उनका साथ के साथ आलोचक आ गया, बाकी डिपार्टमेंट्स को हम कागज भेज रहे हैं और उम्मीद है कि हर कार्य जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ज्यादातर सीवरेज को लेके या आईडी को लेकर समस्या, और सीवरेज को हमने कह दी कि जो जो कॉलोनी को ऑथराइज कर दिया गया उनपे भी पूर्ण रूप से सीवरेज की और गलियां बनने की व्यवस्था हो जाएगी।
0: उन्होंने शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर चल रही खींचतान पर कहा कि जल्द ही बातचीत के जरिए समाधान निकाल लिया जाएगा और शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। नौकरियों के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर डॉ मिठा ने स्पष्ट कहा, प्रदेश सरकार की नीति पूरी तरह पारदर्शी है। आज गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर सरकारी नौकरी पा रहा है। भिवानी सहित हरियाणा के विभिन्न जिलों में आज इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। भिवानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय के अलावा तोशाम, सिवानी व लोहारू न्यायिक परिसर में लगाई गई लोक अदालत में आपराधिक मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक मामले, चालान, बैंक ऋण, दीवानी मामले, चेक बाउंस, राजस्व आदि से संबंधित मामले रखे गए। भिवानी की लोक अदालत में रखे गए कुल 27,173 में से 11,476 मामलों का निपटारा किया गया तथा 3,87,57,457 रूपये की राशि का निपटान किया गया, जबकि लोहारू में 70 में से 43, तोशाम में 72 में से 29, सिवानी में 65 में से 37 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं का एक जत्था आज तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब के दर्शन के लिए पहुंच गया। श्रद्धालुओं के नांदेड़ साहिब पहुंचने पर नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा बोर्ड के प्रशासक डॉ विजय सतवीर सिंह ने कहा कि इस योजना से संगत को गुरुओं की कुर्बानी, सिख इतिहास और देश की प्राचीन धार्मिक विरासत को जानने का अवसर मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कहा, केंद्र और राज्य मिलकर देश को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए गीता संदेश, प्रस्तुति डॉक्टर सुरेश कुमार की है।
1: श्रोताओं नमस्कार, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 58 से आगे की व्याख्या। यदा संहरते

चायं कुर्मोंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यहाँ पर अंगों के समेट लेने कछुए का उदाहरण दिया गया है, क्योंकि इंद्रियां भी मानव शरीर में अंग के रूप में अपने अपने विषयों में व्यवहार करते हुए विषयों का उपभोग करती हैं। जैसे कछुआ अपने समस्त अंगों को सब ओर से संकुचित कर अपने शरीर के अंदर समेट लेता है, तब उसकी वह स्थिर अर्थात निश्चल अवस्था होती है। कछुआ तब गति रूप अन्य विषयों में व्यवहार नहीं करता। उसी प्रकार पुरुष समाधि काल में अपने नियंत्रण में की गई इंद्रियों को उनकी वृत्तियों अर्थात विषयों के भोग से हटा लेता है और किसी भी विषय भोग में आसक्ति नहीं रखता। नहीं मन और बुद्धि स्थूल अथवा सूक्ष्म विषयों में विचलित होती, तब वह पुरुष स्थिर बुद्धि कहलाता है। मृत्युलोक में मानव स्वभाव इंद्रियों के आकर्षण से भरा हुआ है, अतः आकर्षण रहित होकर तटस्थ भाव से व्यवहार करने में ही मनुष्य का कल्याण है। श्लोक संख्या 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के मात्र विषय तो निवृत्त हो जाते हैं अर्थात लौट जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिर बुद्धि पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके समाप्त हो जाती है। निराहारस्य पद में हम निराहार का अर्थ उपवास या व्रत के अर्थ में समझते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति भोजन का त्याग कर देता है वह निराहारी है। लेकिन इस अर्थ से तो केवल एक ही इंद्रिय के विषय का त्याग होता है। अतः यहाँ पर निराहारस्य युक्त देहिने पद के साथ विषयः बहुवचन पद का प्रयोग कर इंद्रियों के समस्त विषयों शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आदि के निवृत्त हो जाने की बात कही गई है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंद्रियों के विषयों की निवृत्ति अर्थात समाप्ति तो हो जाती है, लेकिन स्थिर बुद्धि मनुष्य में आसक्ति रह जाती है। रसवर्जम का यही अभिप्राय है कि रस अर्थात आसक्ति को छोड़कर सब विषय समाप्त हो जाते हैं। परम तत्व परमात्मा के साक्षात्कार के उपरांत उस योगी पुरुष के रस की भी समाप्ति हो जाती है। परमात्मा एक ऐसा अलौकिक दिव्य आकर्षक परम तत्व है जिसके प्राप्त होने पर इतनी मुग्धता और तन्मयता होती है कि व्यक्ति का सारा अहंकार कर्ता भाव नष्ट हो जाता है। इस अवस्था में विषयों के उपभोग व आसक्ति रहित हुआ परम तत्व में व्यक्ति स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्लोक संख्या 60। यत तो हयापि कौन्तेयो पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। देखिए कितने सुंदर शब्दों में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हे कौन्तेय प्रमाथिनी इंद्रियाणि यततः विपश्चितः पुरुषस्य हयापि मनः प्रसभं हरन्ति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मथने के स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए विद्वान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। यह श्लोक पूर्व श्लोक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन विषयों का उपभोग न करने वाले पुरुष के अंतकरण में संस्कार भाव से आसक्ति बनी रहती है। विद्वान मनुष्य शास्त्र श्रवण मनन चिंतन से आसक्ति को छोड़ने का यत्न करता है, किंतु पहले के भोगे गए विषयों के सूक्ष्म संस्कार से ये इंद्रियां विद्वान

0: पुरुष के मन का हरण कर उसे अपने विषयों की ओर आकर्षित कर लेती हैं। अतः स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि की अवस्था को प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य को आसक्ति का सर्वथा त्याग करके इंद्रियों को अपने वश में करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। यह श्लोक अग्रिम श्लोक से भी जुड़ा हुआ है। श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि अस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् तानि सर्वाणि इन्द्रियाणि संयम्यः युक्तः मत्परसन आसीत हि यस्य इन्द्रियाणि वशे भवन्ति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। इंद्रियां बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि सभी इंद्रियों को वश में कर समाहित हुआ पुरुष सर्वात्मा परमात्मा ईश्वर के समक्ष आत्मनिष्ठ अर्थात आत्मप्रायण होकर बैठे अर्थात स्थिर होवे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि आत्मनिष्ठ स्थिर होती है। इस श्लोक में पुरुष ईश्वर में समाहित हुआ कहा गया है। यदि पुरुष ईश्वर समक्ष समाहित न होवे तब क्या होगा, यह अग्रिम श्लोक में बताया गया है। श्लोक संख्या 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते। विषयान ध्यायते पुंसः तेषु संगः आसक्ति ही प्रीति ही उपजायते। संगात कामः संजायते कामात क्रोध अभिजायते। विषयों का ध्यान मनन चिंतन करते हुए पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है अर्थात प्रेम हो जाता है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, उनसे लगाव पैदा होता है और लगाव होने से इच्छा उत्पन्न होती है। जब कामना अर्थात इच्छा के पूर्ण होने में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। सांसारिक मनुष्य को यह सीख लेनी चाहिए कि यदि क्रोध पर नियंत्रण करना है तो कामनाओं पर भी नियंत्रण करना होगा। आगे के श्लोक में क्रोध से उत्पन्न अन्य दोष कहे गए हैं। श्लोक संख्या 63। क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। प्रबल क्रोध के वेग से सम्मोह अर्थात मूढ़ता उत्पन्न होती है, जिसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक अर्थात ज्ञान नहीं होता। सम्मोह से स्मृति विभ्रम अर्थात स्मरण शक्ति का नाश होता है अर्थात गुरु अथवा शास्त्र जन्य उपदेश स्मरण में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्मृति नाश से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। यूं कहें कि स्मरण शक्ति के ह्रास से विवेक और ज्ञान की शक्ति रूप बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि के नाश से पुरुष नष्ट हो जाता है। अतः जीवन काल में मनुष्य को ईश्वर समक्ष आत्मनिष्ठ तथा समाहित होना चाहिए। श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आपने दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 58 से 63 तक व्याख्या सुनी।
1: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश, प्रस्तुति डॉक्टर सुरेश कुमार की थी। FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होते हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनने के दायरे की राम राम साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी आपका अपना कार्यक्रम, और जिस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा प्रयास है कि हम अपने किसान साथियों तक वो सब जानकारी पहुंचा सकें जो जरूरी है समय मौसम परिस्थिति के हिसाब से। मगर इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ये कि जो मेरा किसान साथी है वो आर्थिक रूप से संपन्न हो, मेरे किसान साथी जो हैं वो वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सके ताकि कम लागत पे अधिक उत्पादन ले सके, क्योंकि जब कम लागत पे अधिक उत्पादन लेंगे तो भाई उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनकी आय भी दोगुनी होगी। आज जब किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। उधर जो हमारे किसान साथी देखो अनुभवी हैं, इतने लंबे समय तक वो जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं, दादाई भी कर रहे हैं कि पहला हम बाप कर रहा था, फिर उसे अमन दादा कर रहा था, उसका बाप कर रहा था, परदादा कर रहा था और करते आ रहे हैं, और उस तक लेकर इब तक उन्होंने बहुत से अनुभव प्राप्त करे हैं बेहतर खेती कर सके। लेकिन समय के हिसाब से जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनमें जो विज्ञानी काम कर रहे हैं, जो हमारे अनुभवी किसान साथी हैं, प्रगतिशील किसान साथी हैं, वह भी अपना जो अनुभव अपनी खोज आपके बीच लेना चाहें और उनके मेहनत से ही आप और बेहतर खेती कर सकें। तो इस वास्ते हमारे प्रयास है कि हम सब चर्चा आपके बीच में करें। तो जब बात चर्चा की है तो आज लगभग हम तीन जो है हम तीन विषय लेने का प्रयास करेंगे। एक तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी रासायनिक कीटनाशक है उनकी जगह प्राकृतिक कीटनाशक लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर हम किस तरह जो है लाही, लीफ मैनर, आरा, पेलू, फल छेदक, थ्रिप्स, इनका नियंत्रण कर सकें, हम इस चर्चा करेंगे इसके ऊपर। एक जो हमारी एग्रो मार्केट ऐप है थोड़ी चर्चा इस पर करेंगे, मौसम की जानकारी तो जरूर देंगे, आपने कल का कार्यक्रम केरा का उसके बारे में बतावेंगे, और चर्चा करेंगे कि जो हम साथी गुलाब की खेती कर रहे हैं वह अपने गुलाब की फसल ने किस तरह रोगों से बचा सके। मनोरंजन तो होगा ही क्योंकि बिना मनोरंजन तो वही कार्यक्रम संभव नहीं हो सकता। ये सारी चर्चा आज के कार्यक्रम में रहेगी। तो क्यों ना शुरुआत कर ले हम सबसे पहला कि जो हमारी फसल में जो लीफ मैनर, लाही, हरा पेलू, फल छेदक, थ्रिप्स, सफेद मक्खी, ये सब का जब प्रकोप हो इन्हें हम किस तरह हमारे देसी तरीके से प्राकृतिक तरीके से इन पर हम नियंत्रण कर सकें। तो इसके वास्ते ये है कि लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट बनाना पड़ेगा। बनावें किस तरह, बात यह है तो 1 किलो लहसुन का कोआ, 10 मिलीलीटर मिट्टी का तेल में रात में भिगो कर देते हैं और तड़के लहसुन साफ करके उसका पेस्ट बना लें। इतनी तरीका है। दूसरी जो हम बात कर रहे हैं इसी में ही वो है कि उसने अलग अलग बर्तन में अपनी 500 ग्राम अदरक, 50 मिलीलीटर पानी और 500 ग्राम हरी मिर्च और उसमें 50 मिलीलीटर पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना ले, तो तीनों पेस्ट बन गए। तीनों पेस्ट ने 100 लीटर पानी में और 50

अच्छी तरह मिलाकर उसने छान ले और उसका स्प्रे आप जो है उन फसलों पर कर सके, जाहिर सारी हमने बीमारी बताई आपने, ये कीड़े बताए आपने, और इन छिड़काव के बीच में जो है जो 14 दिन का रखना पड़ेगा, उसमें छाप आठ के फिर छिड़क सको। तो इस तरह से जो ये पेस्ट है इनका प्रयोग करके आप जो है अपनी फसल में बचा सकें, और उससे क्या होगा, एक तो रासायनिक जो है कीटनाशक छिड़कने पड़ने की आपने, दूसरा जो है खर्चा बचेगा, तीसरी जो चीज है जो पेस्ट आप बनाएंगे इनके छिड़काव होता है किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह आप जो है लहसुन अदरक और जो हरी मिर्च है इसका पेस्ट बनाकर अपने जो फसल में छिड़काव कर सकें, और जो भी कीटनाशक जो कीट हैं आपकी फसल में उनका निर्माण सकें, कीटनाशक के रूप में प्रयोग कर सकें। ये बात कर लें कि जो हमारा कल का कार्यक्रम रहेगा उसमें हम क्या की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम एक दिन पहले आपने बता दिया ताकि आपने उसकी सही जानकारी मिल सके। तो कल का जो हमारा कार्यक्रम है वह एतवार का, और एतवार में हम लोग आपके बीच में थारे संदेश मारे गीत, तो आप अपने संदेश भेज दोगे कार्यक्रम में और भाई आपके पसंद के गीत भी हम जावेंगे, क्योंकि कार्यक्रम तो आपका अपना है। बात कल की चल रही है तो ये बता दें आपने कि कल का मौसम भी लगभग वही रहेगा जो आज है, ज्यादा लंबा चौड़ा जो है तापमान में फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये सब जानकारी आप जो है हमारे जो भिन्न भिन्न केंद्र हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र है या हमारी यूनिवर्सिटीज हैं या जो आप स्मार्ट ऐप आ रही हैं उन तक भी ले सकें, तो जितनी भी जानकारी ले सकें आप, और बाद जब जानकारी की आई है तो आपने बता दें कि हमारे पे एक नंबर और है जिस तरफ जानकारी खेती से संबंधित सारी जानकारी ले सके, और वो नंबर है 1551, जिसे आप जो है किसान कॉल सेंटर के नाम से भी जाना है। तो किसान कॉल सेंटर पर आप जो है अपना फोन करोगे, संपर्क सूत्र आपको जो हमने बता ही दिया साथ दोगे, तो भाई वहां आपने सारी जानकारी मिलेगी। एक बात ध्यान रखियो कि यू निःशुल्क है, इस पे किसी तरह का पैसा कौन लगता। तो ये तो थी किसान का सेंटर की बात है। ये बात कर लें उन साथियों की जो साथी गुलाब की खेती कर रहे हैं, अपना पता है कि हमारे किसान जो है परंपरागत खेती से हटके गुलाब की खेती करनी है, और कहीं इसने जो है परंपरागत फसल के गल्ले भी ले रहे हैं, और अब जो समय है अब वो है कि जो फूलों की खेती है बहुत लाभदायक सिद्ध हो रही है, अच्छी कीमत जो है फूलों की खेती से मिल रही है, अच्छा लाभ मिल रहा है। वो तो आप जो खेती करो चाहे गुलाब की चाहे वो गुलदावरी की कासेन की डेलिया की बहुत सी ऐसे हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं आज गुलाब की बात करेंगे, गुलाब मुख्य जो फसल है, क्योंकि ये गुलाब के पौधे पर जो किसी कीड़े का बीमारी का प्रकोप हो गया तो समझो फूल की अब आ गई, फूल खत्म हो गया, अब फूल में से बात रहती भी नहीं, तो या तो फूल खत्म हो जाएगा या फूल की जो आब हवा खत्म होगी उसमें जो निशान पड़ गए या मुरे से हो गए तो आपने उसकी कीमत को नहीं मिलेगी। तो इस वास्ते जरूरी है हम इन बातें ख्याल रखें, कौन कौन से ऐसे कीड़े हैं या रोग हैं, खासकर पर हम रोग की बात करना, मैं कौन कौन से रोग हैं जो हमारे गुलाब की फसल में नुकसान दे सके, जिससे हम पहचान के भाई उनका उपचार कर सकें। तो सबसे पहला जो बीमारी है जो रोग है वो है काला वर्ण धब्बा। क्यों होगा इस तरह, इस रोग का जो प्रभावित पत्तियों के दोनों ओर काले रंग के धब्बे दिखाई देंगे आपने, और इन धब्बे के किनारे जालदार से हो जाएंगे, पत्तियां भी पीली सी पड़ जाएंगी और पीछे तरफ में सूखनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह ये उसका प्रकोप रहेगा। अब प्रकोप मैंने आपने देख किया, आप घबराने की बात नहीं है, उसमें एकदम उपाय करने की जरूरत है। उपाय क्या है कि मैनको जे 75 WP

दायका जाना क्यों कि मैन को जेब पचहत्तर WP या फिर कैप्टाफोल का गुड़ 250 ग्राम दोनों में तो कोई एक लेना है। आजकल चाहते आपने कि या तो आपने मैन को जेब पचहत्तर WP लेनी है और उसने 100 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करना है, या फिर आपने करना क्या है जो कैप्टाफोल का घोल जो है 250 ग्राम लेना है और उसने 100 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव अपने फसल पर कर देंगे, उससे हम जो काला वर्ण धब्बा है उस तरह अपनी फसल में बचा लेंगे। एक बीमारी और हो सके, उस बीमारी का नाम है टहनी अंगमारी। आपने नाम तो पता कि जिसके नाम में टहनी अंगमारी है, यानी इसका मतलब क्या है कि यह बीमारी ज्यादातर टहनी के कटे हुए सिरे से शुरू हो जाएगी और ऊपरी भाग तक नीचे जड़ों तक जाएगी, सहज सहज जो है फैलना शुरू कर देगी। इस वजह से टहनी अंगमारी है कि टहनी से फैलेगी अब जड़ तक पहुंचेगी और जितनी भी रोगग्रस्त टहनी होंगी जिन टहनी पर इसका प्रकोप होगा वो भूरे काले रंग की हो जाएगी और जिस तरह उसने सही वातावरण मिलेगा, उसके अनुकूल वातावरण होगा, सही वातावरण होगा, तो जो रोग है उसकी शाखाओं तक टहनी तक तने में और फिर जड़ में पहुंच जाएगा और सहज सहज करके एक ऐसा समय आएगा कि पौधे सूख कर मर जाएंगे। अगर आपके पौधे खत्म, पौधे खत्म फिर किसके फूल थे? अब बात है कि घबराने की बात से भी नहीं है, हर बात का इलाज है। तो जहां इसकी बात है तो जो करना के है जो सूखे मौसम में सब तरफ तो टहनी की कांट छांट कर दो, इतनी ध्यान रखना आपने। एक बात हो रही है जो कटरा बाग है उसकी जो टिड्डा सा होगा तिरछा सा होगा और वो सूज का नहीं होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि उस पर मी का पानी पड़ जाए, ओस की बूंद पड़ जाए और जो रोग और जो ओस की बूंद है वो रोगाणुओं के जो है प्रकोप ने टहनी पर नहीं आने देने की, यानी कटे बाग पर नहीं ठहर जाने की। इस तरह मी आवेगा तो जिस तरह वो जीवाणु होंगे कटी टहनी पर उस बूंद ग्रद हो जाएंगे, मी ग्रद हो जाएंगे, देखते ही ध्यान रखना उसका। और जो रोगस टहनी है उनके इससे ना कम तक कम 5 इंच नीचे तक काटना पड़ेगा। अब लग गया कि आपने गुलाब के जो है पिड्डे ला रखे हैं उस पर जो है टहनी अंगमारी का प्रकोप हो गया, तो आपने करना क्या है, एक तो मैंने क्या था कि 36 काटने हैं और 36 पर जो सूज करने होना चाहिए, दूसरा जो आप उसने काटोगे तो कम तक कम 5 इंच नीचे तक

बुडेक्स पेस्ट का लेप करना, एकदम करना, जो नहीं भी कर दिया आज के आठ का कल ना करो, एकदम करना, और पाँच छः दफे कोपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बनाकर छिड़काव करना, और जितनी टहनियाँ सूख रही होंगी, मैं अपने न्यू खेत में निगरानी डोल पर निगरानी उनका भी तरीका रहेगा, मैं सारी सूखी टहनी जो है इकट्ठी करके उन्हें जला दूँ। इतना का टहनी अंगमारी की बात, पर एक बीमारी हो सके जिन्हें हम सफेद चूनी रोग कहते हैं, जिन्हें पाउडर मिल्ड्रू रोग कहते हैं, तो क्या लक्षण होंगे बोला इसके? एक तो इसके लक्षण में दिखेंगे सफेद और दूसरे धब्बे पत्तियों के ऊपरली सतह पर बनना शुरू हो जाएंगे, और ये रूई के बराबर धब्बे इसके होंगे, गहरे रंग के होंगे, और चून सस्प होगा, और जिन पर ज्यादा प्रकोप होगा, जिन टहनियों पर ज्यादा प्रकोप हो जाएगा, वह पत्तियां सूख कर जड़ जाएंगी, और इसमें वो है कि ये रोग ज्यादातर कभी लगा जब मौसम शुष्क हो, उसमें इसका ज्यादा प्रकोप मिलेगा। तो इस वास्ते थोड़े से लक्षण इसके ध्यान रखने हैं और मौसम का ध्यान रखना है। बात आएगी भाई फिर बचाव के, इसका तो बचाव इसका भी है करना की है। एक तो सल्फेक्स 300 ग्राम और 100 लीटर पानी, इसका गोल बनाओ और छिड़काव कर।

तो प्रति किले के हिसाब से दूसरा तरीका क्या है, टैथिन 100 मीटर और 100 लीटर पानी मिलाना, अब उसका छिड़काव कर सको। हम एक बात फिर क्या हम कि कई बार भाई गलती क्या करते हैं कि हम दो तीन दवाई बतावा और भाई दो तीन दवाई दोनों का प्रयोग इकट्ठा करते हैं, दोनों इकट्ठा नहीं करना, उनमें किसी एक का प्रयोग करना, जब इकट्ठे करने तो इकट्ठा बताओ इकट्ठा कर लो, ये तो आपने उन दोनों तीनों में जो बतावा किसी एक का, जब एक है तो एक बताओगे, जब भाई दो तीन है तो इकट्ठे हो दो तीन इकट्ठा करेंगे। तो अब हम जब बात कर रहे हैं कि आपने सल्फेक्स या फिर जो है कैराथिन कोई सी एक लेनी है, और जो मैंने बताया आप तक कि जो सल्फेक्स लोगे तो 300 ग्राम और 100 लीटर पानी, जो कैराथिन लोगे 100 मिलीलीटर और 100 ग्राम 100 लीटर पानी, ये गोल बनाना छिड़काव करना, और जो जरूरत पड़े भाई इसका छिड़काव आठ कैफे करना पड़ेगा। एक बीमारी और आ सके अपनी फसल में, वो है दुस्तर फुफंद जिन्हें कहते हैं, यानी जिन्हें ग्रे मोल्ड कहते हैं। आप देखोगे कि जिस तरह इस रोग का प्रकोप होगा तो जो से कलियां हैं वो खिलता पहले ही भूल रंग की होकर सुनने शुरू हो जाएंगी, सो अध खिली कलियां हैं वो संस्कार बनेंगी मुरझाएंगी और फूलों पर भूरे गहरे रंग के धब्बे पड़ जाएंगे, और पाश्चात इन धब्बे में भूरे रंग के सफेद फूफूंद आपने दिखागा, जिससे होके कि जो हमारे फूल हैं में सड़कें नष्ट हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे, और जो ये रोग जो है ज्यादा फैल जाए तो किले किले खत्म हो जाए। ये रोग होगा किस समय, जब जो है नमी ज्यादा हो, जब इस रोग के होने की संभावना ज्यादा रहे, तो इस वास्ते इसका भी आपने नमी के मौसम में विशेष ख्याल रखना है। फिर बात वही आएगी भी इसका उपाय, उपाय इसका भी है, डर की बात नहीं है, बीमारी है इसका इलाज भी है। तो एक तो इसका इलाज ये है कि हमने टोपसिन एम लेनी है 50 ग्राम और वो 100 लीटर पानी मिलानी है, उसका हमने गुड़ बनाना है, या फिर कार्बोनोलिजिम 50 ग्राम लेनी है वो भी 100 लीटर पानी मिलानी है, कोई सी एक ले लो उसका गुड़ बना के हमें छिड़काव करना है। तीसरी दवाई हमारे पास जो है कैप्टाफोल है, वह लेनी है 250 ग्राम प्रति 100 लीटर के हिसाब से। तो तीनों में से कोई सी एक दवाई लो, मात्रा का ध्यान रखियो, पानी का ध्यान रखियो, और उसका गुड़ बनाकर मैंने छिड़काव करना है। जो आपने लगा कि भी थोड़ी कमी रह गई है और मैं छिड़काव करना चाहिए, तो आप आवश्यकता अनुसार एक दो छिड़काव और कर सकें। तो इस तरह चाहे वो काला वर्ण धब्बा हो, चाहे टहनी बीमारी हो, चाहे वो सफेद चुनी रोग हो या दूसर फुफंद हो, कोई सी भी हो, जिस समय पर उनका ध्यान रखेंगे और उनके लक्षण देख कर पहचान जाएंगे तो और उसको उपचार कर देंगे, तो आप बढ़िया जो है गुलाब की फसल ले सको। बस इन्हीं बातें ध्यान रखना, कई बार क्या है कि आप उस चीज़ से जो चूक जो जब लक्षण दिखाई दें उसमें आप ध्यान नहीं देते और आपकी लापरवाही में जो है वो रोग ज़्यादा फैल जाए और बड़ा नुकसान फिर जो उठाना पड़ जाए। इतनी मेहनत आप देख कर फसल में, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही जो है वो नुकसान देते हैं। तो इस वास्ते आप जब फसल में रोज चक्कर काटोगे देखोगे तो हर लक्षण जो मैंने बताए हैं उन पर नजर रखोगे भी इस फसल में ये लक्षण तो नहीं है, अगर आपने लगा कि ऐसा लक्षण है तो आप उसका यूँ उपाय कर लोगे, या आपके पास जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, यूनिवर्सिटी है, अनुसंधान केंद्र है, आप उन तय बेज जग मिलकर जो है अपनी फसल के जो बीमारी है उसका समाप्त करा सकें और बढ़िया जो है फसल ले सकें। आप कहेंगे तो भाई सारी बात ले रहे कर एक मनोरंजन भी करा दो, एक रागड़ी भी सुना दो, तो क्यों ना आपने एक रागड़ी सुना दें फिर।

0: मार्केट ऐप है उसके बारे में, जिसे हम आप एग्री बाजार भी कहते हैं। जो ये ऐप है वो क्या है, किसानों ने मंडिया तक लाइव भाव, मौसम अपडेट, फसल सलाह और सीधे खिदाई तक जुड़ी सुविधा के बारे में बताया। इस ऐप के माध्यम से जो है बीच के दलाल भी खत्म हो जाए और दलाली खत्म हो जाए। और ये जो ऐप है ये आपने बताया कि किस तरह जो आप मंडी के भाव ले सकें, या किस तरह ई मंडी की सुविधा ले सकें, किस तरह आप कृषि विशेषज्ञ तक संपर्क कर सकें, किस तरह आप जो है कीटनाशक, चेतावनी, सरकारी योजनाएं, इन सब के बारे में लाभ ले बता सकें। अब इन ऐप का जो वही बात है कि भाई लाभ क्या है, तो ये आप इसी वास्ते ये कि जो हमारे किसान साथी हैं वो किसी भी जानकारी तक अनजान ना रहे। मैं किसान साथी ने जो है या चिंता ना हो कि कल का मौसम कैसा रहेगा, भाई ये काम करूं कि ना करूं, कभी काम कर दूं भाई मैं दवाई गेर दूं या खाद गेर दूं, राम बरस जाए और भाई फिर लाभ ना हो या आंधी आ जाए, या हमारा किसान साथी ने सोच लो भाई दवाई छिड़क दूं क्या ना राम बरसा का फायदा हो जाएगा, राम बरसा को नहीं। तो ये जो ऐप है जिन हम एग्रो मार्केट ऐप कहते हैं या जिन्हें एग्रो बाजार भी कहते हैं आगे जाके, तो उस तय जो है आपने सारी जानकारी मिलेंगी। और फिर बात कर रहे हैं कि मंडी के भाव, कि किस मंडी में जाना है, कि कौन कौन सी मंडी है, इसमें किस मंडी में आज जो है जीरी के रेट बिकी है, मान लो कैथल में की रेट बिकी, इसार में की रेट बिकी, भाई गुड़गांव में की रेट बिकी, सोनीपत में के, कुरुक्षेत्र में के, इन्हें जो लाए भाव रहेंगे मंडियां के वो आप इस तरह पता कर सकें, और जो सलाह लेनी है और जो सुविधाएं इनकी जानकारी आप इस ऐप के माध्यम से ले सकें। तो ये तो बात थी जो है एग्रो मार्केट ऐप की। अब बात करने की जो हमारे कार्यक्रम है ये, इनको आप जो है जो किसी कारण से कोई साथी आज किसी भाग ने नहीं सुन पाया, ये तैयार बैठा था भाई अपना पते कि ओहो भाई हम तो नहीं सुन पाए इस प्रोग्राम ने, तो इस प्रोग्राम ने हम जो है उसी दिन यूट्यूब पर भी तरह गिरा है। तो आप यूट्यूब पर हम प्रोग्राम अपलोड कर देंगे तो आप किसी भी दिन जो हमारी यूट्यूब की साइट पर जाकर के इस प्रोग्राम में सुन सकें ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। तो हर रोज का जो हमारा किसान वाणी या अन्नदाता कार्यक्रम है वो आपने यूट्यूब पर मिलेगा, तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी कभी मर्जी सुन सकें। तो ये हमारे किसान साथियों वास्ते है। तो आज के इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक थे वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है, इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: उतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गो से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब ही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: और इसके अगले आज का हमारा किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनाने की दादी की राम राम।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार और मैं आपका अपना साथ है गिरधारी और कार्यक्रम के सारे सुन रहे हैं मेरी मीठी मीठी प्यारी प्यारी राम राम साथियों। कार्यक्रम ग्राम संसार में हम तो चर्चा भी करना संगीत भी करना और लद दिन लद प्रोग्राम है। आज के हैं कार्यक्रम थोड़ी देर पीछे
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
5: सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो आज हम चर्चा करें कि जो ये देश है ना, जिसमें आप आज राहत की सांस ले रहे हो, आज़ादी की सांस ले रहे हो, जिसमें आप खुशी मना रहे हो, जिसमें आपको हर तरह की सुविधा है, ये न्यू ही नहीं मिली। इस आज़ादी वास्ते असंख्य लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी है, हस्त्र पे दी है। कोई सैनिक के रूप में था, कोई नेता के रूप में था, कोई गर्म दल का था, कोई नरम दल का था, कोई उदारवादी था, कोई भाई कट्टरवादी था, अनेक तरह के जो हमारी स्वतंत्रता सेनानी रही है। किसी ने लेखनी के माध्यम से काम किया, कविता गा के लिख के बड़े काम करे किसी ने, यानी पता नहीं किस किस तरह से रूप से जो है वो देश के लिए आज़ादी में अपना योगदान दिया। और उनमें से एक थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जिनका जन्म 9 मई को, यानी 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आया था। अपने पते के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उदारवादी नेता रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं और महात्मा गांधी के राष्ट्रीय गुरु भी रहे हैं। उन्होंने 905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। जिस तौर तक इनकी राजनीतिक विचारधारा की बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नरमपंथी गुट के नेता माने गए हैं। और जहाँ तक इनके योगदान की बात है, सैद्धांतिक तरीके से ब्रिटिश शासन में सुधार और स्वशासन की वकालत करने वाले नेता थे ये। 1905 में देश की सेवा के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। और हमने पहले कहा कि महात्मा गांधी ने इनको जो है धर्मात्मा गोखले के नाम से भी एक किताब इन पर लिखी गई थी। उनकी विचार देशभक्ति के थे, जीवन सादा था, उच्च विचार रहे। और 1899 से 902 के बीच में बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य भी रहे, वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ थे। इसी वास्ते उन्होंने भारत का जो गिल्डरस्टोन भी कहा गया। तो इस तरह से जो है गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती जो है वो 9 मई को मनाई जाए हर साल। और ये भारत की आज़ादी, भारत को सुधार के रूप में इनका एक मुख्य योगदान है। हम ऐसे वीरों को सत

0: आई एक किनारी पे देश व पार्वती का जोड़ा
1: एक के

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क।

0: उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 7:30 होते हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जय जवान। कार्यक्रम जय जवान सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और ये कार्यक्रम हम विशेष रूप से अपने सैनिक भाइयों के लिए लेकर आते हैं और उनको सुनवाते हैं कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे।

तो आइए ले चलते हैं सैनिक भाइयों को आज के इस कार्यक्रम में मनोरंजन की दुनिया में और कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे आपकी नजर करते हैं। लेकिन उससे पहले ये संदेश।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

और इसके साथ ही कार्यक्रम जय जवान अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोता दोस्तों, शाम के 7:45 होते हैं। अब प्रस्तुत है गैर फिल्मी रचनाओं का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस गैर फिल्मी रचनाओं के कार्यक्रम गुलदस्ता में आपको सुनवाते हैं वडाली बंधुओं की कुछ सदाबहार रचनाएं। लेकिन उससे पहले ये संदेश।

0: खार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी
2: फीस तो देखो
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।
4: वो कहाँ है
5: मिठाई?
6: RBI कहता है
7: तरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के
9: यात्रियों
10: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
9: दिमाग चार्ज करो।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
9: देखा
10: पापा, रुको मैं पे करता हूँ, नो सिग्नल।
6: अब क्या करोगे?
10: तेरी रास्ता है ना,
9: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
10: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
7: तरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: दिलदारा
4: क्या

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे बाय।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
0: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
0: RBI कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ थोड़े सारिया का और मेरे वड्डे वीर इत्थे सारे तशरीफ फरमाओ तुसी अमरदीप गिल साहब उन्होंने बहुत शुक्रगुजार हाँ सारे का थोड़े सारे दे दीदार होए ने इस करके मैं कहन जा रहा कि

इसके साथ ही कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी रचनाओं का कार्यक्रम गुलदस्ता। आज इसमें हमारे कलाकार थे वडाली बंधु। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

0: कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे आपकी नजर प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: हो गया इंतजाम।
6: किसका?
5: गुड्डी की फीस का।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत। आज कार्यक्रम का समय सीमित रहेगा, 8:15 तक ये कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा। तो आपको ले चलते हैं एक बार फिर से सदाबहार गीतों की इस श्रृंखला में। अब आपको सुनवाते हैं राजपूत फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

और इसके साथ ही कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार, FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओ, रात्रि के 8:15 अब होते हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा।

0: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र आपको भारत की एक दिलचस्प यात्रा पर लेके जा रहा है। हमारा भारत एक ऐसी धरती है जहाँ कई भाषाएं, धर्म, रीति रिवाज और परंपराएं एक स्वर में मौजूद हैं। भारत एक देश ही नहीं बल्कि सभ्यताओं की एक जीवंत तस्वीर है और भारत की विभिन्नता में एकता इस तस्वीर में अपने शानदार रंग भरती है। भारत का हर कोना एक अलग कहानी बताता है, फिर भी सारी कहानियाँ अनेकता में एकता के सांझे धागे में पिरोई हैं। आओ विलक्षणता की इस सांझी विरासत में गोता लगाएं और आनंद मनाएं जो हमें भारतीय होने की पहचान दिलाता है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा के तहत
1: तो चलिए आज आपको लिए

बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी है पटना। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा और सबसे बड़ा प्रदेश है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित हैं। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। गंगा इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों, शिक्षा केंद्रों एवं संस्कृति का गढ़ था। बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुआ। बिहार अनेक महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा। यहाँ के मुख्य कला संसाधनों में

मधुबनी पेंटिंग, लोक नृत्य और लोक गीत शामिल है। बिहार राज्य के क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड से अलग हो जाने के बाद बिहार की भूमि मुख्यतः नदियों के मैदान और कृषि योग्य

भौगोलिक तौर पर बिहार को तीन प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है, उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है। मध्यवर्ती विशाल मैदान बिहार के 94% भाग को समेटे हुए है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, परंतु इसी बाढ़ के कारण यह क्षेत्र तबाही की कगार पर भी खड़ा है। उत्तरी बिहार बागमती, कोसी, बूढ़ी गंडक और गंडक, घाघरा और उसकी सहायक नदियों का समतल क्षेत्र है। सोन, पुनपुन, फल्गु और किउल नदी बिहार के दक्षिण में गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं। खेती की बात करें तो बिहार में धान, गेहूं, दलहन, मक्का, तिलहन, तंबाकू, सब्जी तथा केला, आम और लीची जैसे फलों की खेती की जाती है। हाजीपुर का केला और मुजफ्फरपुर की लीची बहुत ही प्रसिद्ध है। बिहार के खानपान की बात करें तो बिहार अपने खानपान की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों व्यंजन यहाँ पसंद किए जाते हैं। मिठाइयों की बात करें तो अनरसा की गोली, खाजा, मोतीचूर लड्डू, गया की तिलकुट, गोपालगंज के थावे और रफीगंज का छेना यहाँ की बहुत प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं। इसके अलावा सत्तू, दही चूड़वा, लिट्टी चोखा जैसे व्यंजन तो यहाँ के लोगों की कमजोरी है। इसके अलावा बिहार का मालपुआ भी काफी स्वादिष्ट होता है। बिहार के बाकी व्यंजनों में दाल पूरी, खाजा, मखाना खीर, गुजिया, ठेकुआ, भेलपूरी, खजूरी और बैंगन का भरता शामिल।

बिहार के त्योहार राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। छठ पूजा से लेकर पितृपक्ष मेले तक अनेक त्योहार राज्य में मनाए जाते हैं। अगर हम त्योहारों और मेलों की बात करें तो राज्य में छठ पूजा, सोनपुर पशु मेला, पितृपक्ष मेला, राजगीर महोत्सव और बेहुला महोत्सव प्रमुख हैं। इसके साथ साथ दिवाली और होली जैसे त्योहार बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं।

0: बिहार के लोक संगीत की बात करें, यहाँ का लोक संगीत यहाँ की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिहार का लोक संगीत उसके लोगों के विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और दैनिक जीवन को प्रतिबिंबित करता है। लोक संगीत में मुख्य तौर पर विदेशिया बिहार के सबसे प्रिय लोक संगीत में से एक है। यह भोजपुरी क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था और छठ पूजा के त्योहार के अवसर पर अक्सर प्रदर्शित किया जाता है। सोहर वह पारंपरिक लोक गीत है जिसे शिशु जन्म के अवसर पर गाया जाता है।
1: राजा

होली गीत इस त्योहार के दौरान गाए जाते हैं। ये गीत उत्साह और आनंद को त्योहार में जोड़ते हैं। बज बजिका, बजिका बिहार के मिथिला क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक संगीत शैली है। यह मैथिली और हिंदी भाषा का मिश्रण है और क्षेत्र की सांस्कृतिक अस्मिता को प्रतिबिंबित करता है। बजिका गाने विभिन्न उत्सवों और अवसरों के दौरान गाए जाते हैं। बिहार का लोक संगीत अपनी सरलता, आत्मीय सुरों और अर्थपूर्ण गीतों के लिए जाना जाता है, जो सामान्य लोगों के जीवन से संबंधित

परंपरागत संगीत वाद्य जैसे ढोलक, तबला, बांसुरी और मंजीरा बिहार के लोक संगीत में उपयोग किए जाते हैं। बिहार राज्य के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो जट जटिन नृत्य, झूमर नृत्य, विदेशिया नृत्य, झिझिया नृत्य, कर्मा नृत्य, नटुआ नृत्य और जितिया नृत्य यहाँ की विशेष पहचान है। ये लोक नृत्य बिहार राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं और लोगों के जीवन के रंग, खुशियों और दुख सुख को साझा करने के अवसर प्रदान करते हैं।

बिहार की भाषा और संस्कृति की बात करें तो हिंदी बिहार की राजभाषा और उर्दू द्वितीय राजभाषा है। मैथिली भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित एकमात्र बिहारी भाषा है। भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका बिहार में बोली जाने वाली अन्य प्रमुख भाषाओं और बोलियों में सम्मिलित हैं। प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, श्री पंचमी, मोहर्रम, ईद और क्रिसमस हैं। एक समय बिहार को शिक्षा के सर्व प्रमुख केंद्रों में गिना जाता था, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदांतपुरी विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार के गौरवशाली अध्ययन केंद्र थे। बिहार के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें तो त्रिमोहिनी संगम, यहाँ तीन प्रमुख नदियों का संगम है जिसमें मुख्य रूप से गंगा और कोसी का मिलन है। कलबलिया नदी की एक छोटी सी धारा इस उत्तर वाहिनी गंगा तट से मिलकर संगम करती है और इसे ही त्रिमोहिनी संगम कहा जाता है। पटना राज्य की वर्तमान राजधानी और महान ऐतिहासिक स्थल है। अतीत में यह सत्ता, धर्म और ज्ञान का केंद्र रहा है। धार्मिक स्थलों में महावीर मंदिर, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी, शीतला माता मंदिर और हर मंदिर, और पटना का हर मंदिर, गया का महाबोधि मंदिर, माता सीता की जन्म स्थली सीतामढ़ी, सिंहेश्वर नाथ मंदिर, अररिया का सबसे ऊंची काली मंदिर, पूर्णिया का नृसिंह अवतार स्थल सूर्य मंदिर, नवलखा मंदिर, अंबिका दुर्गा मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। बिहार में घूमने की जगहों की बात करें, बुद्ध की धरती बोध गया एक पवित्र स्थान है जहाँ बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान

इसके अलावा गया में फल्गु नदी के तट पर हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितरों का तर्पण किया जाता है। प्राचीन शिक्षा की नगरी नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था। राजगीर प्राचीन मगध राज्य की राजधानी रह चुका है। यहाँ का गृद्धकूट पर्वत, जहाँ बुद्ध ने कई उपदेश दिए, वैशाली, जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का तीर्थ स्थल है। यहाँ का अशोक स्तंभ, बुद्ध स्तूप यहाँ की ऐतिहासिकता को सिद्ध करते हैं। ककोलत जलप्रपात, मंढार पर्वत और शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में घूमने के विशेष पर्यटन स्थल हैं।

ज्ञान और वीरता का संसार है, जो हार ना माने वो बिहार है। सत्य अहिंसा की धरती बुद्ध का अवतार है। संस्कृति और इतिहास की विरासत का गौरवशाली बिहार है। निर्देशन विनयश्री, तकनीकी सहयोग राजेंद्र कुमार, स्वर अनुराधा, प्रस्तुति महेंद्र मोहन शर्मा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा, FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है।

एफ एम बैंड पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाहेंगे कि फरमाइशी फिल्म

गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें आप सुन सकेंगे रात्रि ठीक 10 बजे से, और विविध भारती के कार्यक्रमों का आप आनंद ले सकते हैं। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम रहेगा आपके लिए, और दूसरा फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत रात्रि 9:30 से। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या, और उसके बाद ठीक 9 बजे अंग्रेजी में समाचार होंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में TVK नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार 3री बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉ

0: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। एपीईडीए के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as cabinet ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Nabin, and several other leaders of the BJP.

अन्विता दत्त और कुमार का लिखा ये अगला गीत सुनिए, जिसे संगीतबद्ध किया है विशाल और शेखर ने। बैनी दयाल और नीति मोहन की आवाजें हैं। फिल्म का नाम बैंग बैंग।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के अंत में शानदार फिल्म का ये गीत, अमित त्रिवेदी की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

शानदार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी अमित त्रिवेदी की, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और धुन बनाई थी अमित त्रिवेदी ने। इसी के साथ शीर्षक संगीत का ये कार्यक्रम आपके लिए यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक मखमली आवाज की।
1: बेचैन नजर बेताब निगर

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

0: कोई।
1: इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे। तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

0: फिर वही।
1: मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना।

यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार करते हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें।

0: कार्यक्रम चांदनी रातें सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम के लिए व्हाट्सएप संदेशों पर हमें बहुत से मित्रों की फरमाइशें प्राप्त हुई हैं। सूची हमेशा की तरह लंबी है और गुजारिश हमेशा की तरह रहेगी कि आप अब हमें कोई संदेश ना भेजें, क्योंकि उन्हें फिर कार्यक्रम में शामिल करना थोड़ा मुश्किल रहता है। दोस्तों, पहले ही सूची हमारे दोस्तों की बहुत लंबी है फरमाइशों की। तो कार्यक्रम अब शुरू करते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में और पसंद करने वाले दोस्तों के नाम इस गीत के बाद।
1: आएगी

0: जाने मन इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी आप सब हैं। आप हैं विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, ट्वंशी खेड़ा और इनके परिवार के सदस्यगण, राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा, गायत्री पुजारा, साहिल पुजारा, आप सब हैं रादौर यमुनानगर हरियाणा से। मुरादगढ़ से आप हैं रमेश कुमार कंबोज और इनके परिवार के सदस्यगण। उगाला अंबाला से हमारे पुराने और नियमित श्रोता रवि कुमार राहुल और इनके परिवार के सदस्यगण। श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम शामिल करेंगे इन दोस्तों की, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ,
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।

शो दोस्तों, ये गीत आपने सुना फिल्म थी अभिमान। लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह के बोलों को सुरों में ढाला था सचिन देव बर्मन ने। और पसंद करने वाले आप सब, आप हैं अनिका काम्बोज, नेशनल कराटे चैंपियन, नीरज देवी, सचिन, राहुल, गुरवीर, सोनिया, शिव कुमार और कमलेश देवी, गांव संधाड़ा, नजदीक रादौर, जिला यमुनानगर, हरियाणा से। अगली फरमाइश हमारे इन दोस्तों की।

मजनू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, ये हमारे दोस्त हैं। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, पदमपुर जिला गंगानगर राजस्थान से आप हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। ये संदेश हमारे इन साथियों का, आप सब हैं गांव मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान, कृष्णा धीमान, राहुल, कोमल, शुभम, प्रियंका, आंचल, कुंज, पर्व, प्रवीण, चिराग, रजत और राजेश धीमान। ये संदेश हमारे इन दोस्तों का, आप सब हैं लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा, मनोहरी बाई, प्रभुलाल, बागड़ी मोहल्ला रटलाई से आप हैं नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंदीबाई बागड़ी। और ये संदेश हम शामिल कर रहे हैं हमारे इन दोस्तों का, आप सब हैं सनावद से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना। ये संदेश अगला है हमारे पास नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, नयामुद्दीन, मतीन, सैयद खलील, मुबीन, मोहम्मद यासीन, शेख चांद, शेख सलीम, फारूक, मूसा करीम। और बीड शहर महाराष्ट्र से ये संदेश हमारे इन दोस्तों का, नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री, अंजलि, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुलथे। गोंदर गांव करनाल जिला से हरियाणा से आप हैं किरणपाल मुंबक, तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम, सोनिया, रोशनी और भगत सिंह मुंबक। जवाहर नगर दुर्ग से आप हैं आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा, संगीता रानी, महक, सुनीता रानी, आरजू, हंसमुख लाल, बुलबुल, संजीव और परिवार के सदस्यगण। ये संदेश हम शामिल कर रहे हैं गांव महसवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक, निंजा जी और स्वप्निल धाड़े। तो दोस्तों कार्यक्रम में आपकी नजर अब हम कर रहे हैं ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म थी बाबू। मजरूह के बोलों को सुरों में ढाला था राजेश रोशन ने और पसंद करने वाले श्रोता साथी थे आप सब। गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार कांबोज, पिंकी वंश और भुवेश कुमार कांबोज। ये संदेश हमारे इन दोस्तों का, आप सब हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान और खुराना। आप सब हैं वारणा शाहपुर कोहलापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदूरकर, तेजस्विनी चौहान, माई इंदूरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान। जलालाबाद पश्चिम से आप हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। ये संदेश हमारे इन दोस्तों का। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता, परणीता, एकांश, प्रिंस एकांश और छोटा बच्चा टुक टुक, ये हमारे साथी हैं आप सब। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन आदि जैन। और ये संदेश हम शामिल कर रहे हैं कर्णवीर हाउस भुच्चो कैंचिया बठिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, कर्णवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत। ये संदेश हमारे इन दोस्तों का। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और इनके दोस्त, सरगुजा मेन पार्ट से विनोद थापा, विजय थापा और इनके दोस्त, ये हमारे साथी हैं। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा। दोस्तों लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम में ये गीत, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: मंगल भवन मंगल हारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

शुरू दोस्तों कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म दूसरा आदमी फिल्म से ये गीत। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। आइए आनंद लेते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की गायकी में ये गीत।

कार्यक्रम दोस्तों आप सुन रहे हैं चांदनी रातें फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त नवीन। ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप गीत सुन रहे थे। फिल्म थी आप तो ऐसे न थे। श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम में ये गीत हमने लिया था आप तो ऐसे न थे फिल्म से। गीत लिखा था निजा फाजली ने और उसे सुरों में पिरोया था उषा खन्ना ने। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम इस प्रकार से आप सब हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ये हमारे साथी हैं। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह आप सब हैं गांव दुल्हापुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। ये अगला संदेश हम शामिल कर रहे हैं हमारे इन दोस्तों का। आप सब हैं रघुनाथपुरा, जिला गंगानगर, राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी ये हमारे दोस्त हैं। दिल्ली शहर से राजवली अंसारी, डब्ल्यू अंसारी और बिहार से शबनम खातून, वसीम अकरम और ओडिया खातून। मानपुर साबित, जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान ये हमारे दोस्त हैं। घमरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल। सनावत, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, शेख मूसा, राजकुमार बोडाना और ये संदेश हमारे इन साथियों का। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से आप सब हैं प्रशांत सिंदेश, सुनीता, यशराज, ऋषि और कृष्णा घोड़के। तो श्रोता दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे इन दोस्तों की रहेगी। उससे पहले हम फिल्म का नाम आपको बताना चाहेंगे। ये गीत हमने लिया है मोहम्मद रफी की आवाज में। आइए सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है अब्दुल्ला।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अब्दुल्ला फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे साथी हैं आप सब। कलानौर से आप हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक। छोटा बाजार थानेसर से आप हैं श्याम शर्मा, मिली शर्मा, चिराग, राघव, तनुज, पलक, उद्देश्य। आप सब हैं गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइन हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन। गांव पैजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आप हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक। आप सब हैं जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति। गांव फ्रांसिस हिसार से आप हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके परिवार के सदस्यगण। ये हमारे दोस्त हैं किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और अनुराग मोहन। गांव हरियाढाणी जिला सिरसा हरियाणा से आप हैं सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या। गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला से आप हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। ये हमारे साथी हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। और गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से आप हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत कौर। जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सद्दीकी, नजमा बेगम सद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष, आप सब हैं बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। और ये हमारे साथी हैं सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक चौहान। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रांजनू, अशोकपुरी, सुशील, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलम, रमापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक। कृष्णा पार्क दिल्ली से आप हैं सीटी दीवाना सुखविंदर सिंह जोड़ा, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबराय। और शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा गांव जाखोद राजस्थान से। सेक्टर 5 कुड़ी सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। तो दोस्तों कार्यक्रम में मोहम्मद रफी की आवाज में लीजिए एक बार सुनिए नील कमल फिल्म से ये गीत।

और श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए गुलाम अली की आवाज में आवारगी फिल्म से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रात एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। राति के 11 बजने को हैं। कुछ देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास

शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला